आपे पुरख आपे ही नारी आपे पासा आपे सारी आपे पिड़बादी जग खेलै आपे कीमत पाई है।

आपे रतन अनूप अमोलो, आपे परखे पूरा तोलो, आपे किस ही कस बख्से, आपे दे लै भाई हे। आपे तनख आपे सरबाणा, आपे सुगड़ स्वरूप सयाणा, कहता बखता सुनता सोई, आपे बणत बनाई हे। पौन गुरु पाणी पित जाता, उधर

ज्योत स्वरूपी बाला जटा बिकट बिकराल स्वरूपी रूप न रेख्या काई है। भेद कते भी भेद न जाता ना तिस माद पिता सुत प्राता सगले सैल उपाय समाया।

निज कर बैस रहे पौखाया तावत राखे ठाकर हाया कमल विगास हरे सरसुबर आत्म राम सखाई है। मरण लिखाए मंडल में आए क्यों रही है चलना पर थाए सच्चाए अमर सच्चे अमरापुर सो सच मिले बढ़ाई है। आपो पाया जगत सुबाया जिन सिरिया तिन तंदे लाया सच्चे ऊपर अवर नदी से साचे कीमत पाई है। ऐथे गोय लड़िया दिन चारे ते खेल तमाशा धुंदू कारे बाजी खेल गए बाजी गर जो निस्सुपने पखलाई है। तिनको तख्त मिली वड़ियाई निरपो मन वसया लिबलाई खंडी ब्रह्मंडी पाताली पुरई त्रिपवन ताड़ी लाई है। साची नगरी तख्त सचावा गुरमुख साच मिले सुख पावा साचे साचे तख्त वड़ाई होमे गणत गवाई है। गणत गणिय सहसा जी है क्यों सुख पावे दूए तीए निर्मल एक निरंजन दाता गुर पूरे ते पत पाई है। जुग जुग विरली गुरमुख जाता साचा रव रहया मन राता तिसकी ओट गही सुख पाया मन तन मैल न काई है। जीव रसायन साचै राती हर प्रभ संगी पाओ ना प्राती श्रवण स्रोत रजे गुरबाणी ज्योति ज्योत मिलाई है। कर कर पैर रख रख पैर धरे तो पाओ धरना रख रख पैर धरे पाओ धरना जत गत देखो तेरी सरना दुख सुख देह तू है मन भाव है तुझ ही स्यों बने आई है। अंत काल को बेली नाही गुरमुख जाता तुद सालाही नानक नाम रते बैरागी निज कर ताड़ी लाई है। मारू महला पहला आद जुगादी अपर अपारे आद निरंजन खसम हमारे साचे जोग जुगत विचारी साचे ताड़ी लाई है। केतड़िया जुग धुंधू कारे ताड़ी लाई सिरजन हारे सच नाम सच्ची वड़ियाई साचे तख्त वड़ाई है। सत जुग सत संतोख शरीरा सत सत वरत है गैर गंभीरा सच्चा साहिब सच परख है साचे हुक्म चलाई है। सत संतोखी सत गुर पूरा गुर का शब्द मने सो सूरा साची दरगह साच निवासा माने हुक्म रजाई है। सत जुग साच कह सब कोई सच वरत है साचा सोई मनमुख साच परम पौ पंजन गुरमुख साच सखाई है। त्रेतै धर्म कला एक चूकी तीन चरण एक दुबदा सूकी गुरमुख होवै सो साच बखाणे मनमुख पचै अवाई है। मनमुख कदे न दरगह सी जय बिन शब्द क्यों अंतर री जय बाधे आवह बाधे जावे सो जिह बूझ न काई है। दया द्वापर अद्धी होई गुरमुख विरला चीने कोई दोए पग धर्म धरे तरणी तर गुरमुख साच तथाई है। राजे धर्म करह परथाए आसा बंदे दान कराए राम नाम बिन मुक्त न होई थाके कर्म कमाई है। कर्म धर्म कर मुक्त मंगाही मुक्त पदार्थ शब्द सलाही बिन गुर शब्द मुक्त न होई पर पंच कर परमाई है। माया ममता छोड़ी न जाई से छूटे सचकार कमाई एनस भगत रते विचारी ठाकुर स्यों बने आई है। एक जाप तप कर कर तीर्थ नावै ज्यो तुद भावै तिवै चलावै हर हठ निग्रह भतीज न भीजै बिन हर गुर किन पत पाई है। कली काल मह एक कल राखी बिन गुर पूरे किने न पाखी मन मकूड़ वरतै वरतारा बिन सतगुर भरम न जाई है। सतगुर वे परवाहु सिरंदा ना जमकाण न छंदा बंदा जो तिस सेवै सो अबनासी ना तिस काल संताई है। गुर मह आप रखिया करतारे गुरमुख कोट असंख अंगार उधारे सर्ब जी आजग जीवन दाता निरभौ मैल न काई है। सगले जाच है गुर भंडारी आप निरंजन लख अपारी नानक साच कह प्रभ जाच मैं दीजे साच रजाई है। मारू महला पहला साचे मेले शब्द मिलाए जा तिस भाणा सहज समाये त्रिभवन जोत धरी परमेसर अवर न दूजा भाई है। जिसके चाकर तिसकी सेवा शब्द पतीजे लख अपेवा भगता का गुणकारी करता सब बख्श लए वड़ियाई है। दे दे टूट नया वै साचे लै लै मुकर पौधे काचे मूल न बूझे साच न रीजह दूजे परम भुलाई है। गुरमुख जाग रहे दिन राती साचे की लिव गुरमत जाती मनमुख सोए रहे से लूटे गुरमुख साबत पाई है। कूड़े आवे कूड़े जावे कूड़े राती कूड़ कमावे शब्द मिले से दरगह पैदे गुरमुख सुरत समाई है। कूड़ मुठी ठगी अड़गवाड़ी ज्यो वाड़ी यो जाड़ उजाड़ी नाम बिना किस साधन लागे हर बिसरिया दुख पाई है। भोजन साच मिलाया घाई नाम रतन साची वड़ियाई चीने आप पछाण सोई ज्योति ज्योत मिलाई है।
ਨਾ ਬਹੁ ਭੁੱਲੀ ਚੋਟਾ ਖਾਏ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ, ਭਜ ਭਜ ਮੂਹੇ ਅਚੇਤ ਨਾ ਚੇਤ ਹੈ ਅਜਗਰ ਭਾਰ ਲਦਾਈ ਹੈ। ਬਿਨ ਬਾਦ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾਈ, ਮੈਂ ਦੇਖਾ ਲਿਹੋ ਤਿਸਾ ਲਾਹੀ, ਮਨ ਤਨ ਅਰਪ ਮਿਲੈ ਜਗ ਜੀਵਨ, ਹਰ ਸਿਹੁ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਗਤ ਮਿਤ ਕੋਏ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਜੇ ਕੋ ਵੱਡਾ ਕਹਾਏ ਵਡਾਈ ਖਾਵੈ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਟ ਨਾ ਦਾਤੀ।

सतगुर दाता मुक्त कराए सब रोग गवाए अमृत रस पाए जम जागात नहीं कर लागे जिस अगन बुझी ठरसी नाहे काया हंस प्रीत बहतारी ओह जोगी पुरख ओह सुंदर नारी एनस भोगे जो जिबिनो दी उठ चलत है मता न कीना है सिष्ट उपाय रहे प्रभ छा जय पौन पाणी बैस अंतर गा जय मनुआ डोले दूत संगत मिल सो पाए जो किश कीना है नाम विसार दुख दुख सही है हुकुम भया चलना क्यों रही है नरक कूप मह गोते खावे जो जलते बाहर मीना है चौरासी ही नरक साखत पोगाई है जैसा की चह तै सो पाई है सतगुर बाजो मुक्त न होई किरत बाधा ग्रस दीना है खंडे तार गली अत पीड़ी लेखाली जय तिल ज्यो पीड़ी माद पता कलत्र सुत बेली नाही बिन हर रस मुक्त न कीना है मीत सखे केते जग माही बिन गुर परमेसर कोई नाही गुर की सेवा मुक्त परायण अन दिन कीर्तन की नाहे कूड़ छोड़ साचे कौताव जो इच्छो सोई फल पावो साच वखर के वापारी विरले लैला सौदा की नाहे हर हर नाम वखर लै चलो दर्शन पावो सहज महल हो गुरमुख खोज लै दिन पूरे यो समदर्सी ची नाहे प्रभ बेअंत गुरमत को पाव है गुर कै शब्द मन को समझावे सतगुर की बाणी सत सत कर मन हो यो आत्म रामै लीना है नारद सारद सेवक तेरे त्रिभवन सेवक वडो वडेरे सब तेरी कुदरत तू सिर सिर दाता सब तेरो कारण की नाहे एक दर सेव है दर्द वन्याए ओए दरगह पैदे गुरु सतगुरु छड़ाए हो मह बंधन सतगुर तोड़े ते चित चंचल चलन ना दीना है सतगुर मिलो चीनो बिद साई जित प्रभ पाव हो गणत नकाई हो मैं मार करो गुर सेवा जन नानक हर रंग भी नाहे मारू महला पहला असुर संघारण राम हमारा घट घट रमैया राम प्यारा नाल लख न लखी है मूले गुरमुख लिख बिचारा है गुरमुख साधु शरण तुम्हारी कर कृपा प्रभ पारे उतारी अगन पानी सागर अत गहरा गुर सतगुर पारे उतारा है मन मुख अंदले सो जी नाही आवह जाहे मरह मर जाई पूर्व लिखिया लेख न मिटई जम दर अंध खुआरा है एक आवह जावह कर वासन पावह किरत के बाद हे पाप कमावह अंदले सो जी बूझ न काई लोभ बुरा अहंकारा है पिर बिन क्या तिस तन सिगारा पर पिर राती खसम बिसारा ज्यो बेसवा पूत बाप को कहिए त्यों फोकट कार विकारा हे प्रेत पिंजर मह दुख कनेरे नरक पचह ज्ञान अंधेरे धर्म राय की बाकी लीजै जिन हर का नाम विसारा हे सूरज तप अगन बिख झाला अपत पशु मनमुख बेताला आसा मनसा कूड़ कमावे रोग बुरा बुरे आरा है मस्तक पार कलर सिर पारा क्यों कर भव जल लंग सपारा सतगुर बोहत आदु जगादी राम नाम निसतारा है पुत्र कलतर जग हेत प्यारा माया मोह पसरिया पासारा जम के फाहे सतगुर तोड़े गुरमुख तत् बिचारा है कूड़ मुठी चाले बोहराही मन मुख दाजै पढ़ पढ़ पाही अमृत नाम गुरु वडदाना नाम जपो सुख सारा है सतगुर तुठा सच दृढ़ाए सब दुख मेटे मार्ग पाए कंडा पाए ना गडे मूले जिस सतगुर रखन हारा है केहू केर लै तन छीजै मन मुख पाथर सैल न पीजै करण पलाव करे बहु तेरे नरक सुर्ग अवतारा है माया बेख भयंगम नाले इन दुबदा कर बहुते जा गाले सतगुर बाजो प्रीत न उपजै भगत।

मूल गवाए दा कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिया लाए ध्याना आप तरह सगले कुल तारे हर दरगह पत स्यो पाए दा खंड पताल दीप सब लोवा सब काल है बस आप रव किया निचल एक आप बिनासी सो निचल ज्योत सहते आए दा हर का सेवक सो हर जेहा भेद न जानो मानस देहा ज्यो जल तरंग उठे बहु भाती फिर सलल सलल समाए दा एक जाचक मंगे दान दुआर है जा प्रभाव है ता कृपा धार है देहो दास जित मन त्रिपता से हर कीर्तन मन ठहराए दा रूड़ो ठाकुर कितै वस ना आवै हर सो किश करे जे हर क्या संता भावे कीता लोड़न सोई करायन दर फेर ना कोई पाए दा जिथे आव घट आए बनत है प्राणी तिथे हर त्याई है सारिंग पाणी जिथे पुत्र कलत्र ना बेली कोई तिथे हर आप छड़ाए दा वड्डा साहेब अगम था क्यों मिलिए प्रभ बेपरवाह काट सिलक जिस मार्ग पाए सो विच संगत वासा पाए दा हुकम बूझे सो सेवक कहिए बुरा भला दो संसार सही है होमे जाए ता एको बूझे सो गुरमुख सहज समाए दा हर के भगत सदा सुखवासी बाल सुभाए अतीत उदासी अनक रंग करे बहु भाती ज्यों पिता पूत लड़ाए दा अगम गोचर कीमत नहीं पाई ता मिलिए जा लय मिलाई गुरमुख प्रगट भया तिन जन कौ जिन तुर मस्तक लेख लखाए दा तू आपे करता कारण करना सिष्ट उपाय।

ब्रह्म अपना बिरद प्रगटाया, दोखी अपना कीता पाया। आए न जाई रहया समाई, नानक दास हर की सरणाई। राग पैरो महला पंजवा, चौप दे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्री तार मोहन सगले पावन निरंकार सुखदाता, ऐसा प्रभ छोड़ कर है अन सेवा, कवन बिखिया रस माता। रे मन मेरे तू गोविंद पाज, अवर उपाव सगल मैं देखे, जो चितविया तित बिगरस काज रहाओ। ठाकुर छोड़ दासी को सिमरह, मनमुख अंध अज्ञाना, हर की भगत करह तिन निंद है, ने गुरे पशु समाना। जियो पिंड तान तान, सब प्रभ का साकत कहते मेरा, अहंग बुद्ध दुर्मत है मैली, बिन गुर भव जल फेरा। होम जग जाप तप सब संयम ताट, तीर्थ नहीं पाया मिटिया आप, पय सरणाई गुरमुख, नानक जगत तराया। भैरव महला पंजवा, बन मह पेख्यो त्रिण मह पेख्यो, गृह पेख्यो उदासाए, दंद धार जड धारा पेख्यो, वर्त नेम तीर्थाए। सत संग पेख्यो मन माए, उब पयाल सर महपूर्ण, रास मंगल गुण गाए रहाओ। जोग पेख सन्यासा पेख्यो, जात जंगम कापड़ाए, तपी तपेसुर मन मह पेख्यो, नाट नाटक निरताए। चाहो मह पेख्यो खाट मह पेख्यो, दास अष्टि सिमृताए, सब मिल एको एक वखाना है, तो किस ते कहो दुराए। अगह अगह बेअंत स्वामी नह, कीम कीम की माए, जन नानक तिन कै बल बल जाइए, जेह काट प्रगटी आए। भैरव महला पंजवा, निकट बुझै सो बुरा क्यों करै, बिख संचै नित डरदा फिरै, है निकटे आर भेद ना पाया, बिन सतगुर सब मोही माया। नेड़ै नेड़ै सब को कहै, गुरमुख भेद विरला कोल है रहाओ। निकट न देखै पार गृह जाए, दर्भ हिरै मिथ्या कर खाए। पैठ गौरी हर संग न जानिया, बाज गुरु है परम भुलानिया। निकट न जाना बोलै कूड़, माया मोहे मूठा है मूड़। अंतर वस्त दिसंतर जाए, बाज गुरु है परम भुलाए। जिस मस्तक कर्म लिखिया लाट।

तुम बखसाते। जैसे पापी को मिले न टोई, शरण आवैता निर्मल होई। सुख पाया सतगुरु मनाए, सब फल पाए गुरु त्याय रहाओ। पार ब्रह्म सतगुरु आदेश, मान तन तेरा सब तेरा देश। चूका पड़दा ता नदरी आया, खसम तू है सबना केराया। तिस भाणा सूके काष्ट हरिया, तिस भाणा ता थाल सिर सरिया। तिस भाणा ता सब फल पाए, चिंत गई।

निर्तन कौ तुम देवो तना अनक पाप जाहे निर्मल मना सकल मनोरथ पूर्ण काम भगत अपने कौ देवो नाम सफल सेवा गोपाल राय करन करावन हार स्वामी ता ते

आओ जब लग सिंह रह बन माहे तब लग बन फूल ही नाहे जब ही सियार सिंह को खाए फूल रही सगली बन राय जीतो बूडो जीतो बूढ़ा हारो तिरह गुरप्रसादी पार उतरे दास कबीर कह समझाए केवल राम रह हो लिवलाए सत्तर सह सलार है जाके सवा लाख पैकम्बरता के सिख जो कही है कोट अठासी छप्पन कोट जा

ब्रह्मांड पिंड सो जान, मन सरोवर करे स्नान। सोहं सो जा कौ जह जाप, जा कौ लिप्त न होए पुनेर पाप। अवर्ण वर्ण काम नहीं शाम, अवरना पाई है गुर की साम। तारी न ट्रै आवे न जाए, सुन सहज मह रहे समाए। मान मदे जाने जे कोए, जो बोलै सो आपै होए। जोत मंत्र मन अस्त्र करै, कह कबीर सो प्राणी तरै। कोट सूर जाकै प्रगास, कोट महादेव अर कबिलास। दुर्गा कोट जाकै मर्दन करै, ब्रह्मा कोट बेद उचरै। जाओ जा चह तो केवल राम, आन देव स्यो नाही काम रहाओ।

जाओ अब की बार न जीवै गाए, ता नाम देव का पतिया जाए। नामे की नारा नामे की कीर्त रही संसार, भगत जना ले उदरिया पार। सगल कलेस निंदक भया खेद, नामे नारायण नहीं भेद। घर दूजा जाओ गुरदेव ता मिलै मुरार, जाओ गुरदेव ता उतरै पार। जाओ गुरदेव ता बैकुंठ तरै, जाओ गुरदेव ता जीवित मरै। सत सत सत सत सत गुरदेव, झूठ झूठ झूठ झूठ आन सब सेव। रहाओ जाओ गुरदेव ता नाम दृढ़ावै, जाओ गुरदेव ता दह दिस धावै। जाओ गुरदेव पंच ते दूर, जाओ गुरदेव ना मर बो चूर। जाओ गुरदेव ता अमृत बानी, जाओ गुरदेव ता अकथ कहानी। जाओ गुरदेव ता अमृत देह, जाओ गुरदेव नाम जप लेह। जाओ गुरदेव भवन त्रै सूजै, जाओ गुरदेव ऊच पद बूझै। जाओ गुरदेव श्री शीस आकाश, जाओ गुरदेव सदा साबास। जाओ गुरदेव सदा बैरागी, जाओ गुरदेव पर निंदा त्यागी। जाओ गुरदेव बुरा भला एक, जाओ गुरदेव ललाट लेख। जाओ गुरदेव कंध नहीं हिराय, जाओ गुरदेव देहरा फिराय। जाओ गुरदेव तां छापर छाई, जाओ गुरदेव सहज निकसाई। जाओ गुरदेव तां अड़सठ नहाया, जाओ गुरदेव तन चक्र बनाया। जाओ गुरदेव तां द्वादश सेवा, जाओ गुरदेव सबै बिख मेवा। जाओ गुरदेव तां संसार टूटै, जाओ गुरदेव तां जमते छूटै। जाओ गुरदेव ता भौजल तरै, जाओ गुरदेव ता जन्म ना मरै। जाओ गुरदेव अठ दस व्यवहार, जाओ गुरदेव अठारह भार। बिन गुरदेव अवर नहीं जाई, बिन गुरदेव अवर नहीं जाई। नाम देव गुर की शरण आई, भैरव बाणी रविदास जियो की। घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। बिन देखै उपजै नहीं आसा, जो दिसै सो होए बिनासा। बरन सहित जो जापै नाम, सो जोगी केवल नेह काम। परचै राम रवै जाओ कोई, पारस परसै दुबदा ना होई। रहाओ सो मन मन की दुबदा खाए, बिन द्वारै त्रै लोक समाए। मन का सुभाओ सब कोई करै, करता होए सो अन भय रहै। फल कारण फूली बन राए, फल लागा तब फूल बिराए। ज्ञानै कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान भया तह कर्म है नास। कृत कारण दद मत है सयान, जीवन मुक्त सदा निर्वाण। कह रविदास परम बैराग, हृदय राम की ना जपस अभाग। नाम देव आओ कलंदर केसवा, कर अबदाली भेसवा। रहाओ जिन आकाश कुलह सिरकीनी, कौसै सपत पताला। चबर पोस का मंदर तेरा, एह बिद बने गोपाला। छपन कोट का पेहन तेरा, सोलह सह सजारा। भार अठारह मुदगर तेरा, सहनक सब संसारा। देही महजद मन मौलाना, सहज निवाज गुजारै। बीबी कौला सौकायन तेरा, निरंकार आकारै। भगत करत मेरे ताल सिनाए, किनब केहे पह करहु पुकारा। नामे का स्वामी तरजामी, फिरे सगल बेदेसवा। राग बसंत महला पहला, एक ओंकार सतनाम। करता पुरख निरभउ निरवैर, अकाल मूरत अजूनी सह भंग। गुरप्रसाद महा महा मुबारखी, चढ़िया सदा बसंत। पर फुड़ चित संभाल सोए, सदा सदा गोबिंद। भोलिया हो मैं सुरत विसार, हो मैं मार विचार मन। गुण विच गुण लै सार, रहाओ कर्म पेड़ साखा हरी। धर्म फुल फल ज्ञान, पत प्राप्त शाव घणी। चूका मन अभिमान, अखी कुदरत कन्नी बाणी। मुख आखण सचनाम, पत का तन पूरा होआ। लागा सहज ध्यान, महारुति आवना। वेखो कर्म कमाए, नानक हरे ना सुख ही। जे गुरमुख रहे समाए, महला पहला बसंत। रुत आई ले सरस बसंत माहे, रंग राते रवे से तेरा चाए। किस पूज चढ़ावो लगाओ पाए, तेरा दासन दासा कहो राए। जग जीवन जुगत न मिलै काए, रहाओ तेरी मूर्त एका बहुत रूप। किस पूज चढ़ावो देओ धूप, तेरा अंत न पाया कहाँ पाए। तेरा दासन दासा कहाँ राए, तेरे साठ संबत सब दीस तीर्था। तेरा सच नाम परमेसरा, तेरी गत अवगत नहीं जानी है। अनजानत नाम वखाणी है, नानक विचारा क्या कहे। सब लोक सलाहे एक सह, सिर नानक लोका पाव है। बलहारी जाओ जेते तेरे नाव है। बसंत महला पहला।
ਸੋਇਨੇ ਕਾ ਚੌਕਾ ਕੰਚਨ ਕੁਵਾਰ, ਰੂਪੇ ਕੀ ਆਕਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ, ਗੰਗਾ ਕਾ ਉਦਕ ਕਰੰਤੇ ਕੀ ਆਗ, ਗਰੁੜਾ ਖਾਣਾ ਦੁੱਧ ਸਿਉ ਗਾਡ, ਰੇ ਮਨ ਲੇਖੈ ਕਬਹੁ ਨਾ ਪਾਏ, ਜਾਮ ਨਾ ਭੀਜੈ ਸਾਚ ਨਾਏ ਰਹਾਉ, ਦਸ ਅੱਠ ਲਿਖੇ ਹੋਵੈ ਪਾਸ, ਚਾਰੇ ਬੇਦ ਮੁਖਾਗਰ ਪਾਠ, ਪੁਰਬੀ ਨਾ ਵੈ ਵਰਤਾਂ ਵਰਨਾ ਕੀ ਦਾਤ, ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਹੋਵੈ ਸੇਖ, ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਭਗਵੇ ਭੇਖ, ਕੋ ਗ੍ਰਹੀ ਕਰਮਾਂ ਕੀ ਸੰਧ, ਬਿਨ ਬੂਜੇ ਸਭ ਖੜੀਏ ਸਬੰਧ, ਜੇਤੇ ਜੀ ਲਿਖੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਰਨੀ ਉੱਪਰ ਹੋਵਗ ਸਾਰ, ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਕੇ ਸਿਫਤ ਭੰਡਾਰ, ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਤੀਜਾ ਬਸਤਰ ਉਤਾਰ ਦਿਗੰਬਰ ਹੋਗ, ਜਟਾ ਧਾਰ ਕਿਆ ਕਮਾਵੈ ਜੋਗ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਦਸਵੈ ਦੁਆਰ, ਭਰਮ ਭਰਮ ਆਵੈ ਮੂੜਾ ਵਾਰੋ ਵਾਰ, ਏਕ ਧਿਆਵੋ ਮੂੜ ਮਨਾ, ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਹੇ ਇੱਕ ਖਿਨਾ ਰਹਾਉ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਸ ਕਰੇ ਵਖਿਆਣ, ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਪੜੇ ਪੁਰਾਣ, ਪਾਖੰਡ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਨ ਕਪਟ ਕਮਾਹੇ, ਤਿਨ ਕਰ ਮਈਆ ਨੇੜਨਾ ਨੇੜੇ ਨਾਹੇ, ਜੇ ਕੋ ਐਸਾ ਸੰਜਮੀ ਹੋਏ, ਕਿਰਿਆ ਵਿਸੇਖ ਪੂਜਾ ਕਰੇ, ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਮਾਹੇ, ਓਏ ਨਿਰੰਜਨ ਕੈਸੇ ਪਾਹੇ, ਕੀਤਾ ਹੋਆ ਕਰੇ ਕਿਆ ਹੋਏ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਚਲਾਏ, ਸੋਏ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਭਰਮ ਚੁਕਾਏ, ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਤਾਂ ਸਾਚਾ ਪਾਏ, ਜਿਸ ਜੀਉ ਅੰਤਰ ਮਹਿਲਾ ਹੋਏ, ਤੀਰਥ ਭਵੈ ਦਿਸੰਤਰ ਲੋਏ, ਨਾਨਕ ਮਿਲੀਐ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ, ਤਾਉ ਭਵਜਲ ਕੇ ਤੂਟ ਸਬੰਧ, ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸਗਲ ਭਵਨ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ, ਮਾਇਆ ਵਰਨਾ ਦੀ ਸਹਿ ਸਰਬ ਤੋਹ, ਤੂੰ ਸੁਰ ਨਰ ਨਾਥਾ ਦੇਵਾ ਦੇਵ, ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸੇਵ, ਮੇਰੇ ਸੁੰਦਰ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਲਾਲ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਤੂੰ ਅਪਰੰਪਰ ਸਰਬ ਪਾਲ ਰਹਾਉ, ਬਿਨ ਸਾਧਨ ਪਾਈਐ ਹਰ ਕਾ ਸੰਗ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੈਲ ਮਲੀਨ ਅੰਗ, ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੇ ਸਾਚ ਸੋਏ, ਜਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕਉ ਤੂੰ ਰਾਖੈ ਰਾਖ ਨਹਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਵੈ ਕਰੇ ਸਾਰ, ਬਿਖਹੋਮੈ ਮਮਤਾ ਪਰ ਹਰਾਏ, ਸਭ ਦੁੱਖ ਬਿਨਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਏ,

दया करहो प्रभ दीन दयाला, तिस बिन अवर नहीं मैं कोए, ज्यों भावै त्यों राखै सोए। गुर गोपाल मेरा मन पाए, रह न सको दर्शन देखे बिन, सहज मिलो गुर मेल मिलाए, रहाओ एह मन लोभी लोभ लभाना, राम विसार बहर पछताना, बिशरत हौ मैं रोग कठन तन पीरा, बिशरत मिलाए गुर सेवा रागे, हर नाम दियो मस्तक वडभागे, पौन पाणी की एह है पौन पाणी की एह देह शरीरा, हौ मैं रोग कठन तन पीरा, गुरमुख राम नाम दारू गुण गाया, कर कृपा गुरु रोग गवाया, चार नदियां अग्नि तन चारे, तृष्णा जलत जले अहंकारे, गुर राखे बड़भागी तारे, जन नानक और हर अमृत धारे, बसंत महला तीजा हर सेवे, सो हर का लोग साच सहज, कदे ना होवै सोग, मनमुख मोय नहीं हर मन माहे, मर मर जमह पी मर जाहे, से जन जीवे जन हर मन माहे, साच संभाले साच समाहे, रहाओ हर ना सेवे ते हर ते दूर, दिसंतर भवे सिर पावे धूर, हर आपे जन लिए लाए, तेना सदा सुख है तिल न तमाए, नदर करे चूकै अभिमान, साची दरगह पावे मान, हर जियो वेखै सद हदूर, गुर कै शब्द रहया रवह गुर कै शब्द रहया भरपूर, जिए जंत की करे प्रतपाल, गुर प्रसादी सद संभाल, दर साचै पत स्यों कर जाए, नानक नाम वडाई पाए, बसंत महला तीजा, अंतर पूजा मन ते होए, एको वेखाए अवर ना और ना कोए, दूजे लोकी बहुत ना बहुत दुख पाया, सतगुरु मैनू एक दिखाया, मेरा प्रभ मौलिया सद बसंत, एह मन मौलिया गाए गुण गोबिंद, रहाओ गुर पूछो तुम करो विचार, ता प्रभ साचे लगै प्यार, आप छोड़ होहे दास तपाए, तौ जग जीवन वसै मन आए, भगत करे सद वेखै हदूर, मेरा प्रभ साध रहे आ भरपूर, इस भगती का कोई जाणै भेओ, सब मेरा प्रभ आत्म देओ, आपे सतगुर मेल मिलाए, जग जीवन स्यों आप चित लाए, मन तन हरिया सह सुभाए, नानक नाम रहे लिव लाए, बसंत महला तीजा, भगत वछल हर वसै मन आए, गुर कृपा ते सहज सुभाए, भगत करे विचों आप खोए, तद ही साच मिलावा होए, भगत सोहे सदा हर प्रभ द्वार, गुर कहित साचा प्रेम प्यार, रहाओ भगत करे सो जन निर्मल होए, गुर प्रसादी विच हो हमें खोए, हर जियो आप वसै मन आए, सदा सांत सुख सह समाए, साच रजे तन सद बसंत, मन तन हरिया रव गुण गोबिंद, बिन ना वै सूखा संसार, अग्न तृष्णा जलै वारो वार, सोई करे जे हर जियो भावै, सदा सुख शरीर भाणै चितलावै, अपना प्रभ सेवे सह सुभाए, नानक नाम वसै मन आए, बसंत महला तीजा, माया मोह शब्द जलाए, मन तन हरिया सतगुर पाए, सफल्यो बिरख हर कै द्वार, साची बाणी नाम प्यार, ए मन हरिया सहज सुभाए, सच फल लागै सतगुर पाए, रहा

ओंकार सतगुरु प्रसाद सेवी ले गोपाल राय अकोल निरंजन भक्त दान दीजै जा चाहे संत जन रहाओ जान चाहे कार दिग दसै सराय चा बैकुंठ पवन चित्रशाला सप्त लोक सामान पूरी अले जान चाहे कर लक्ष्मी कुवारी चंद सुरे दी वड़े कौत काल बपोड़ा कोटवाल सो करा श्री सो ऐसा राजा श्री नर हरि जान चाहे कर कलाल ब्रह्मा चतुर्मुख डांवड़ा जिन विश्व संसार राजी ले जान कह कर ईश्वर बावला जगत गुरु तत् सार खा ज्ञान पाखी ले पाप कुण जान चाहे डांगिया द्वारा चित्रगुप्त लेखिया धर्म राय परोली प्रतार सो ऐसा राजा श्री गोपाल जान चै कर गण गंधर्व रखी बपड़े ढाडिया गावंत आचय सर्व शास्त्र बहुरूपिया अन गुरुआ आखाड़ा मंडली बोल बोल है काचे चौर टूल जांच है पवन चेरी सकत जीत ले पवन अन टूक जाच है परमति सो ऐसा राजा त्रिपवन पति जांचै कर कुरमा पाल सहस फनी वासु सेज बालुआ अठारह पार बनास्पति मालनी छनवे करोड़ी मेघमाला पानी हारिया नक प्रसेव जांचै सुरसुरी शब्द समुद जांचै कड़थली तेजी जांचै वर्तनी सुवैसा राजा त्रिभुवन तनी जांचै कर निकट वर्ती अर्जुन ध्रुव प्रहलाद अम्बरीक नारद ने जय सिद्ध बोध गण गंधर्व मानव हे लाए तेजी जांच है करी सर्व व्यापक अंतर हरी प्रणव नाम देव ताची आन अगल।

सूद सूद कर मार उठायो, कहां करो बाप बैठला, मुए हुए जो मुक्त दे हो गए, मुक्त न जाना कोयला, ए पंडिया मुख ढेर कह तेरी पैज पछाउंडी होयला, तू जो दयाल कृपाल कही है अद्भुत।

आओ जाके भागवत लेखिए अवर नहीं पेखिए तास की जात अछोप छीपा ब्यास मह लेखिए सनक मह पेखिए नाम की नामना सप्त दीपा जाके ईद बकरीद कुल गौरे बद करे मानिय शेख शहीद पीरा जाके बाप वैसी करी पूत ऐसी सरी तेहूरे लोक प्रसिद्ध कबीरा जाके कुटंब के ढेड सब टोहर टोहवंत फिर है।

राम नाम प्रगास हर के सन मिल प्रीत लगानी विचे ग्रह उदास रहाओ हम हर हृदय जप्यो नाम नर हर प्रभ कृपा करी कृपासु अंधन अंध पया मन भिक्षया उदम पहे मिलन की आस हम हर स्वामी प्रीत लगाई जितने सास लिए हम ग्रास किल भिग दैन पहे खिन अंतर तुट गए माया के पास क्या हम खेरम क्या कर्म कमावें मूरख मुग्ध रखे प्रभता अवगणियारे पाथर पारे साधन।

संग साथ हम वट पुरख वट अगम अगोचर हम ढूंढ रहे पाए नहीं आ तू पराय पराय परम पर स्वामी तू आपन जाना है आप जगन्नाथ अदृष्ट अगोचर नाम ते आए सतसंगत मिल साधु पाद हर हर कथा सुनी मिल संगत हर हर जपे अकथ कथ काल हमरे प्राव जगदीश गोसाई हम राख लियो अहो जगन्नाथ जन नानक दास दास दासन को प्राप करो कृपा राखो जन साथ कानड़ा महला चौथा पड़ताल कर पंजवा एक ओहकार सतगुर प्रसाद मन जापो राम गोपाल हर तंजुए हर लाल हर गुरमुख टकसाल हर हो कृपाल रहाओ तुमरे गुण अगम गोचर एक जी।

ਪਰਦ ਮੁਖ ਓਜਲ ਭਇਆ। ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅਰਦ ਤੁਜਾ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣੇ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਾਸ ਹਰ ਜਪਣੇ ਰਹਾਉ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਬਸਿਓ ਨਾਮ। ਜਾਗੋ ਸੁਆਮੀ ਕੀਨੋ ਦਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਆਈ ਸਾਂਤ। ਠਾਕੁਰ ਪਿਹਟੇ ਗੁਰਬਚਨਾਥ ਸੁਰਬ ਕਲਾ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭੀਨ ਨਾ ਮੰਤਰ ਜਾਕਾ ਗੁਰਦੀਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਬਲ ਜਾਓ ਕਲਯੁਗ ਮਹਿ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਨਾਓ। ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਗਾਓ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਅਨਕ ਬਾਰ। ਕਰਬੰਧਨ ਸੰਤਨ ਉਹਾਂ ਚਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਕੀ ਬਸਨਾ ਰਹਾਉ। ਅਨਕ ਪਹਾਂਦ ਕਰ ਦੁਆਰ ਨਾ ਪਾਵੋ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਤਾਂ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਵੋ। ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰ ਦੇਹ ਨਾ ਸੋਧਾ ਸਤਸੰਗਤ ਮਹਿ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨ ਬੂਜੀ ਬਹੁਰੰਗ ਮਾਇਆ ਨਾਮ ਲਿਤ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਪਾਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਜਮ ਭਏ ਦਿਆਲ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਛੂਟੇ ਜੰਜਾਲ। ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਐਸੀ ਮਾਂਗ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਟਹਿਲ ਸੰਦਨ ਕੀ ਸੰਗ ਸਾਧੂ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮਾ ਜਪ ਪਰਮ ਗਤੇ ਰਹਾਉ। ਪੂਜਾ ਚਰਨਾ ਠਾਕੁਰ ਸਰਨਾ ਸੋਈ ਕੁਸਲ ਜ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਕਰਨਾ। ਸਫਲ ਹੋਤ ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੀ ਜਾਗੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਇਆ ਕਰੇਹੀ। ਅਗਿਆਨ ਭਰਮ ਬਿਨਸਾ ਦੁਖ ਡੇਰਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ ਗੁਰ ਪੈਰਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਰੰਗ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਇਆ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਭਗਤ ਭਗਤਨ ਹੂ ਬਣ ਆਈ ਤਨ ਮਨ ਗਲਤ ਭਏ ਠਾਕੁਰ ਸੋ ਆਪਣ ਲਈ ਮਿਲਾਈ ਰਹਾਉ। ਗਾਵਣ ਹਾਰੀ ਗਾਵੈ ਚੀਤ ਤੇ ਉਦਰੇ ਬਸੇ ਜਿਹ ਚੀਤ। ਪੇਕੇ ਭੰਜਨ ਪਰੋਸਨ ਹਾਰੈ ਜਿਹ ਪੂਜਨ ਕੀਨੂ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਰੈ। ਅਨਕ ਸਵਾਂਗ ਕਾਛੇ ਪਿਗ ਧਾਰੀ ਜੈਸੋ ਸਾ ਤੈਸੋ ਦ੍ਰਿਸਟਾਰੀ ਕਹਿਣ ਕਹਾਵਣ ਸਗਲ ਜੰਜਾਰ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਚ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੇਰੂ ਜਨ ਹਰ ਜ ਸੁਣਤ ਉਹ ਮਾਹਿਓ ਰਹਾਉ ਮਨੈ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਪੇਖ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸੋਭਾ ਜਾਤ ਕਤ ਪੇਖੋ ਆਹਿਓ। ਸਭ ਤੇ ਪਰੈ ਪਰੈ ਤੇ ਊਚਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਅਥਾਹਿਓ। ਓਤ ਪੋਤ ਮਿਲਿਓ ਭਗਤਨ ਕੋ ਜਨ ਸਿਓ ਪਰਦਾ ਲਾਹਿਓ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਸਮਾਹਿਓ। ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੰਤਨ ਪੈ ਆਪ ਉਧਾਰਨ ਆਇਓ ਰਹਾਉ। ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਟ ਦੋਤ ਪੰਡਿਤਾ ਹਰ ਹਰ ਮੰਤਰ ਦੜਾਇਓ। ਕਾਟੇ ਰੋਗ ਪੈਮਣ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਹਰ ਔਖਦ ਖਾਇਓ। ਅਸਥਿਤ ਭਾਏ ਬਸੇ ਸੁਖਤਾਨਾ ਬਹੁਰ ਨਕਤ ਹੂੰ ਧਾਇਓ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਰੇ ਕੁਲ ਲੋਗਾ ਨਾਨਕ ਲਿਵਤ ਨਾ ਮਾਇਓ। ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਬਿਸਰ ਗਏ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਏ ਜਬ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ ਰਹਾਉ। ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕਾ ਬਣ ਆਏ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੋ ਸੋ ਭਲਮਾਨਿਓ ਇਹ ਸੁਮਤ ਸਾਧੂ ਤੇ ਪਾਈ। ਸਾਪ ਮੈਂ ਰਵ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭ ਏਕੈ ਪੇਖ ਪੇਖ ਨਾਨਕ ਬਿਕਸਾਈ। ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਰੋ ਪਰਨਾ ਮਾਨ ਮਹੱਤ ਤੁਮਾਰੇ ਉਪਰ ਤੁਮਰੀ ਉੜ ਤੁਮਾਰੀ ਸਰਨਾ ਰਹਾਉ। ਤੁਮਰੀ ਆਸ ਭਰੋਸਾ ਤੁਮਰਾ ਤੁਮਰਾ ਨਾਮ ਲਦੈ ਰਹਿ ਧਰਨਾ। ਤੁਮਰੋ ਬਾਲ ਤੁਮ ਸੰਗ ਸੁਹੇਲੇ ਜੋ ਜੋ ਕਹੋ ਸੋਈ ਸੋਈ ਕਰਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਦਇਆ ਮੈਂ ਸੁਖ ਪਾਵ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਤਾਂ ਪਹੁਜਲ ਤਰਨਾ। ਅਪਹਿ ਦਾਨ ਨਾਮ ਹਰ ਪਾਇਓ ਸਿਰ ਡਾਰਿਓ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਚਰਨਾ। ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸਾਧ ਸਰਨ ਚਰਨ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਸੁਪਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਪੇਖੀ ਸੁਪਨਾ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਰਾਉ ਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੋ ਰਾਜ ਜੋਬਣ ਤਨ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਫਿਰ ਧਾਇਆ। ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਦਰਸ਼ਨਾ ਸਭ ਬੁੱਝੀ ਹੈ ਸਾਂਦ ਪਾਈ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਬਿਨ ਬੋਜੇ ਪਸੂ ਕੀ ਨਿਆਈ ਭਰਮ ਮੋਹਿ ਵਿਆਪਿਓ ਮਾਇਆ। ਸਤਸੰਗ ਜਮ ਜੇਵਰੀ ਕਾਟੀ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਆ। ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਗਾਏ ਸੀਤਲਾ ਸੁਖ ਸਾਂਤ ਮੂਰਤ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਿਤ ਧਿਆਇ ਰਹਾਉ। ਸਗਲ ਆਸੋਤ ਪੂਰਨ ਕੋਟ ਜਨਮ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਪੁਨ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਕਰਿਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਸੁਮਾਏ। ਤਾਪ ਸੰਤਾਂ ਬਿਟੇ ਨਾਨਕ ਬਾਹੁੜ ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਏ। ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਰ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਤੀਆ ਸੰਤ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਗਿਆਨ ਪੂਰਨ ਪਰਮਜੋਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿਮਰਤ ਪਾਈਐ ਮਾਨ। ਰਹਾਉ ਆਵਤ ਜਾਤ ਰਹੇ ਸਰਮਨਾਸੇ ਸਿਮਰਤ ਸਾਧੂ ਸੰਗ। ਪਦ ਪੁਨੀਤ ਹੋਏ ਕਿਨ ਪੀਤਰ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਰੰਗ। ਜੋ ਜੋ ਕਦੈ ਸੁਨੇ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਕੀ ਦੁਰਮਤ ਨਾਸ। ਸਕਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਵੈ ਨਾਨਕ ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਆਸ। ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਿੰਦ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਜੀ ਅਕੈ ਕਾਮ। ਰਹਾਉ ਸੰਤਰੀ ਨਿੰਦ ਮੱਜਣ ਕਰੈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਹਰੈ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਉੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸਾਧੂ ਹਰ ਹਰੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮਾਨ ਮਾਨ ਤਨ ਤਨ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰ ਦੁਖ ਜਾਇ ਰਹਾਉ। ਈਤ ਊਤ ਕਹਾ ਲੁਭਾਵ ਏਕ ਸਿਉ ਮਿਲ ਲਾਏ। ਮਹਾਪਵਿੱਤਰ ਸੰਤ ਆਸਰ ਮਿਲ ਸੰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਧਿਆਈ। ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਸਰਨ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਲਹਿ ਮਿਲਾਏ। ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪੇਖ ਪੇਖ ਬਿਕਸਾਉ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਏਕਾਂਤ ਰਹਾਉ। ਆਨੰਦਾ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਮੂਰਤ ਦਿਸ ਆਣ ਨਾਹੀ ਭਾਂਤ। ਸਿਮਰਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਰ ਹਰ ਮਿੱਟ ਕੂੜ ਕਸਮਲ ਜਾਤ।
गुणर मंद दुख नासहरित भय अंध सांत अमृता रस पियो रसना नानक हर रंग रात कांजड़ा महला पंजवा साजना संत आओ मेरे रहाओ आनंदा गुण गाय मंगल कसमला मिट जाहे परे रह संत चरण तरो माथा चांदना करे होय अंधेरा संत प्रसाद कमल बिकस गोबिंद पजो पेख नेर प्रभ कृपा ते संत पाए वार वार नानक ओ बेरै कानड़ा महला पंजवा चरण शरण गोपाल तेरी मोह मान तो परम राख लीजै काट बेरी रहाउ मूढ़त संसार सागर उदरे हर सिमरत नागर शीतला हर नाम तेरा पूर्ण ठाकुर प्रभ मेरा दीन दर्द निवार तारण दीन दर्द निवार तारण हर कृपा निध पति उदाहरण कोड़ जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुरु नाम जड़ायो कानड़ा महला पंजवा तानो प्रीत चरण संग लागी कोट जाप तब सुख पाए आए मिले पूर्ण बड़ भागी रहाओ मोहे अनाथ दास जन तेरा अवर ओढ़ सगली मोहे त्यागी होर परम काटे प्रभ सिमरत ज्ञान अंजन सोवत जागी तू अथाओ अत बड़ो स्वामी कृपा सिद्ध पूर्ण रतनागी नानक जाचक हर नाम मांगे मस्तक आन धर्यो प्रभ पागी कानड़ा महला पंजवा कुचल कठोर कपट कामी ज्यो मान्य त्यो तार स्वामी रहाउ तू समरथ सन जोग तू राके अपनी कल तार जाप तप निवस संजम नाही इन विदे छुटकार गर्त कुर अंध के काढ़ो प्रभ नानक नदर निहार कानड़ा महला पंजवा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नारायण नरपत नमस्कार ऐसे गुर का बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे रहाओ कवन कवन कवन गुण कहिए अंत नहीं कछ पारे लाख लाख लाख कई कोर को है ऐसो बिचार है बिसम बिसम बिसम ही पई है लाल गुलाल रंगार है कहो नानक संतन रस आई है ज्यो चाक गुंगा मुस्कार है कानड़ा महला पंजवा ना जानी संदन प्रभ बिन आन ऊच निज पेख समान मुख बकनो मनमान रहाओ कटकट पूर रहे सुख सागर पह पंजन मेरे प्राण मन है प्रगास पय प्रभ नासियो मंत्र दियो गुर कान करत कर तग्या करुणा में अंतर जामे ज्ञान आठ पर नानक जस गावे मांगन कौ हर दान कानड़ा महला पंजवा कहन कहावन कहो कई कीत ऐसो जन बिरलो है सेवक जो तत जोग को बेतरा दुख नाही सब सुख ही है रे दुख नाही सब सुख ही है रे एक नेते एक ही नेते बुरा नहीं सब भला ही है रे हार नहीं सब जीत है सोग नाही सदा हर की है रे छोड़ नाही किस लेत है कहो नानक जन हर हर हर है कत आवे कत रमत है कानड़ा महला पंजवा ये को प्रीतम बिसर ना जाए तन मन गलत भय दे संगे मोहनी मोहे रही मोरी माय रहाओ जय जय पह को ब्रथा हाँ अपनी तेऊ तेऊ गह अढ़ अटकाए अनक भांत की एक जाली तांग घंट रही शोराए फिरत फिरत नानक दास आयो संतन ही सरनाए काटे अज्ञान परम मोह माया लियो कंठ लगाए कानड़ा महला पंजवा आनंद रंग मनोद हमारे नामो गावन नाम त्यावन नाम हमारे प्राण आधार रहाओ नामो ज्ञान नाम सनाना हर नाम हमारे कार्य सवार हर नामो शोभा नाम बढ़ाए पजल बिकम नाम हर तारे आगम पदार्थ लाल मोला पय प्राप्त गुर चरनार कहो नानक पर पह कृपाला मगन पय हियर दरसार कानड़ा महला पंजवा साजन मीत स्वामी नेरो पेत सुन सबन कह संगे थोरे काज बुरु कह पेरो रहाओ ना बिना जिते लपटायो कछु नहीं नाही कछ तेरो आग दृष्ट आपद सब प्रगट इंगा मोहय परम अंधेरो अटक्यो सुध बनता संग माया देवन हार दा तार बसेरो कह नानक एक है पारो सह बंधन काटन हार गुर मेरो कानड़ा महला पंजवा बेख्या दल संदन तुमरै गाह्यो तुमरी टेक परोसा ठाकुर शरण तुम्हारी आह्यो रहाओ जन्म जन्म के महापराश दर्शन पेट मेटाह्यो पायो प्रगास अनंत उजियारा सहज समाज समायो कौन कह तुम थे कछ नाही तुम समरथ अतायो कृपा निधान रंग रूप रस नाम नानक लै लाहयो कानड़ा महला पंजवा बूढ़त प्राणी हर जप धीरै बिनसै मोह परम दुख पीरै रहाओ सिमरत निरैन गुर के चन्ना जात कत पिको तुमरी सरना संत प्रसाद हर के गुण गाया गुर पिटत नानक सुख पाया कानड़ा महला पंजवा सिमरत नाम ने सुख पाई है साज नाम हर जस गाई है रहाओ कर कृपा ब्रत बसेरो चरण संदन कह माथा मेरो पार ब्रह्मको सिमरो मना गुरमुख नानक हर जस सुना कानड़ा महला पंजवा मेरे मन प्रीत चरण प्रभ परसन रसना हर हर पूजन तानी अखियन को संतोख प्रभ दर्शन रहाओ
कर्ण नपुर रहो जस प्रीतम कलमल दोक सगल मल हर्षन पावन तावन स्वामी सुख पंत अंग संग काया सद सरसन शरण गही पूर्ण अविनाशी आन पावत तख्त नहीं करसन कर गह लिये नानक जन अपने अंध कोर सागन नहीं मरसन कानड़ा महला पंजवा कोहकत कपट कपट खल गरजत मरजत मीज अनक बरिया रह अंग मत अन रत कुमित इत प्रीतम पेकत प्रमत लाख करिया अनंत व्यवहार अचार विदहीनत मम मद जमात कोप जरिया करण कृपाल गोपाल दीन बंध नानक उदर सरन परिया कानड़ा महला पंजवा जी प्राण मान दाता हर बिसरते ही जान हर बिसरते ही हान रहाओ गोविंद त्याग आन लाग अमृत डार पूम भाग बिखरा ससु आसक्त मुड़े काहे सुख मान काम क्रोध लोभ व्याप्यो जन्म ही की खान पतत पवन शरण आय उदर नानक जान कानड़ा महला पंजवा अब लोको राम को मकार बिंद खोजत खोजत रतन पायो बिसरी सब चेंद्र चरण कमल हृदय तार उतरे दुख मंद राज धन परवार मेरा सर्ब सो गोबिंद साध संगम लाभ पायो नानक फिर नाम रंद कानड़ा महला पंजवा कर पंजवा एको ओंकार सतगुर प्रसाद प्रपूजो नाम अराध गुर सतगुर चरणी लाग हर पाव मन अगाध जग जीतो हो गुर कृपाद अनक पूजा मैं विद खोजी अनक पूजा मैं बहुविद खोजी सा पूजा जी हर पावास माटी की एह पुत्री जोरी कहे कर्म कमास प्रभ बाहां पकर इस मार्ग पाव सोत जंत में लास अवर ओट मैं कोई न सुज एक हर की ओट मैं आस क्या दिन करे अरदास ज्यों सब घट प्रभु निवास प्रभु चरणन की मन प्यास जन नानक दास कही अत है तुमरा हों बाल बाल साध बल जास कानड़ा महला पंजवा कर सेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगत उदाहरण पर तेरा नाव नित नाम निधान हर केरा हर रंग रंग रंग अनुपेरा काहे रे मन मोहि मगनेरा नैनो दिख सद दर्शिरा सो पावै जिस लिखत लेरा रहाओ सेवो सतसंतर नेरा बाँचो तूर पवित्र करेरा अड़सठ मजन मैल कटेरा सास सास त्याव मुख नहीं मोरै कि संग न चालै लाख करोरै प्रभ जी को नाम अंतपुर पुकरोरै मनसा मान एक नरंकेरा सगल त्यागो पाओ तुजेरा कावन कहा हो गुण प्रह तेरा वर्ण साको एक टुलेरा दर्शन प्यास बहुत मन मेरे मिल नानक ए जब जगत गुर केरा कानड़ा महला पंजवा ऐसे कौन विधि दर्श परसना रहो आस प्यास सबल मूर्त उमक हियो तरसना दीन लीन प्यास मीन संतना हर संतना हर संतना की रेन हियो अर्प देन प्रभ पय कृपेन मान मोह त्याग छोड़ियो तो नानक जियो पेटना कानड़ा महला पंजवा रंगा रंग रंगन के रंगा कीट हस्त पूर्ण सब संगा रहाव बरत नेम तीर्थ सहत गंगा जल हेवत पोख अर नंगा पूजा चार करत में लंगा चक्र कर्म तिलक का टंगा दर्शन पेटे बिन सत संगा हट निग्रह अत रहत बेटंगा हो मैं रोग व्यापै चुके न पंगा काम क्रोध अदृशन ज रंगा सो मुक्त नानक सतगुर चंगा कानड़ा महला पंजवा कर सतमा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तिख बूझ गई गई मल साजना पंज पागे चोर सहजे सुखे नो हरे गुण गावती गावती गावती दर्स प्यार रहाउ जैसी करी प्रभ मोह स्यो ऐसी हो कैसी करो हाँ हियो तुम्हारे बल बले बल बले बल गई पहले पैसंत पाए त्याए त्याए प्रीत लाई प्रभ थान तेरो के रोज चंदन कर बिचारन गदास कीर्त करह तुहारी सोई मिलियो जो भाव तोजन नानक ठाकुर रहो समाय एक तू ही तू ही तू ही कानड़ा महला पंजवा कर अठवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तायागी है गुमान मान पेखता दयाल लाल हां हां मन चरण रेन रहाउ हर संत मंद गोपाल ज्ञान ध्यान हृदय गुमद गाय चरण कमल प्रीत लाए दीन दयाल मोहना कृपाल दया माया तार नानक मांगे नाम दान तज मोह परम सगल अभिमान कानड़ा महला पंजवा प्रभ कहन मलन दहन लहन गुरमिले आन नहीं उपाऊ रहाउ तटन खटन जटन होमन नहीं डंड धार सुवाऊ जतन पातन तपन प्रमन अनेक कथन कथते नहीं था पाई ठाऊ सोध सगर सोधना सुख नानका पज नाव कानड़ा महला पंजवा करनावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पतत पावन भगत बशल पै हरन तारण तारण रहाओ
नैन तपते दर्श पीक जस तोक सुनत कर्ण प्राणनाथ अनाथ दाते दीन गोविंद सरन आस पूर्ण दुख बिनाशन गई ओट नानक हर चरण कानड़ा महला पंजवा चरण शरण दयाल ठाकुर आन नाही जाय पतित पावन बिरत स्वामी उदरती हर त्याय नाव संसार गार बेकार सागर पतित मोह मान अंध बिकल माया संग तंद कर गहि प्रभ आप का डोरा कलेहो गोविंद राय अनाथ नाथ सनाथ संतन कोट पाप विनाश मन दर्शन की प्यास प्रभ पूरण गुणतास कृपाल दयाल गोपाल नानक रसना गुण गाय कानड़ा महला पंजवा वार वारो निकारो सुख प्रे सुहाग पल करात रहो कनक मंदिर पाठ सेज सखी मोहे नाय इन स्योतात मुक्त लाल अनक भोग मन नाम नानक हात रुको भोजन भूम सैन सखी प्रे संग सुख बिहात कानड़ा महला पंजवा अंग तोरो मुख जोरो गुर गुर करत मन लोरो प्रे प्रीत प्यारो मोरो रहाओ ग्रह सेज स्वावी आगण चैना तोरो री तोरो पंच दूतन सेव संग तोरो आय न जाय बसन ज आसन ऊंद कमल बिक सोरो छुटकी हम मैं सोरो गई गायो री गाय प्रभ नानक गुणी गहेरो कानड़ा महला पंजवा करनावा ताते जाप मनार जाप जो संत वेद कहत पंथ गाकरो मोह मगन अंग ताप रहा जो राते माते संग बपुरी माया मोह संताप नाम जपत सोजन उदर जिसे उधारो आप बिनस जाय मोह पै परमा नानक संत प्रताप कानड़ा महला पंजवा कर दसवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद ऐसो दान देहो जी संतो जात जियो बलिहार मान मोहि पंज दोई उर्ज निकट बस्यो ताकि सरन साधुआ दूत संग निवार रहाउ कोट जन्म जोन भ्रम्यो हार पर्यो द्वार कृपा गुमद पई मिल्यो नाम आधार दुर्लभ जन्म सफल नानक पाव उतार पार कानड़ा महला पंजवा कर ग्यारवा एक ओंकार तुकर प्रसाद सहज सुपाए अपन आए कछु न जानो कछु दिखाए प्रमिल्यो सुख बाले भोले रहाओ संजोग मलाए सत संगाए कतो न जाए करै बसाई गुण निधान प्रगटो ए चोला चरण लुभाए आनत जाए थानत नाए सर्ब समाए रसक रसक नानक गुण बोले कानड़ा महला पंजवा गोविंद ठाकुर मिलन दोराय परमित रूप अगम अगोचर रहो सर्ब समाए रहो कहन पवन नहीं पायो पाय अनक उगत चतुराई जदन जदन अनक पावरे तो मिल्यो जो कृपाई प्रभु दयार कृपार कृपा निध नानक संतरे नाई कानड़ा महला पंजवा माई सिमरत राम राम राम प्रभन नाही होर चितव चरण अरविंद सासन सपोर रहाओ लाए प्रीत कीन आपन तुटत नाही जोर प्राण मान तन सरबसो हर गुण दे सुख मोर ईद उत राम पूर्ण निरखत रिद खोर संत सरन तर नानक बिनस्यो दुख कोर कानड़ा महला पंजवा जान को प्रभ संगी स्नेहो साजनो तो मीत मेरा ग्रह तेरा सब केहो रहाओ मान मांगो तान मांगो तन लक्ष्मी सुत देहि मुकत पुकत जुगत पूर्ण परमानंद परम निधान पै पाए भक्त निहाल नानक सदा सदा कुर्बान कानड़ा महला पंजवा करत करत करत चर्च चर्च

आओ हम बारक मुक्त ज्ञान पिता समझावेंगे, सोत किन किन पोल बिगार जगत पित पावेंगे। जुवर स्वामी तुम देहो सोयम पावेंगे, मु दूजी नाई ठौर जिस पर हम जावेंगे। जुवर भावै भगत तिना हर पावेंगे, ज्योति ज्योत मलाय ज्योत रल जावेंगे। अरे आपे हुए कृपाल आप ले बुलावेंगे, जन नानक शरण द्वार हर लाज रखावेंगे। शक्का एक कल्याण बहुपाली महला चौथा एक ओंकार तुकर प्रसाद पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी दुख निवार नारायणी सगल भगत जा सुख सागर पवनिद तरन हर चिंता मने रिहाव। दीन दयाल जगदीश दमोदर अंतर जामी गोविंदे ते निरपोजन श्री राम त्याया गुरमत मुरार हर मुकंदे जगदीशर चरण शरण जो आय ते जन पवनिद पार परे भगत जनागी पैजर राग जन नानक आप हर कृपा करे। राग कल्याण महला पंजवा कर पहला एक ओंकार तुकर प्रसाद हमारा है कृपा कीजे अलमक्रांद चरण कमल सुमन फेर फेर रीजे रहाउ। आन जला सो काजना कश्वर बुल चादरक गाव दीजे बिन मिलबे नाही संतोका बिग दर्शन नानक जीजे कल्याण महला पंजवा। जाचक नाम जाचे जाचे सर्वतार सर्व के नायक सुख समूह के दाते राव केती केती मांगण मांगे पावनिया सो पाई है। सफल सफल सफल दर्स रे परस परस गुण गाइय नानक तात तात स्यों मिली है हीरा हीर बधाई है। कल्याण महला पंजवा मेरे लालन की शोभा साधन वतन मन रंगी शोभा राव ब्रह्म महेश सिद्ध मन इंद्रा भक्त दान जस मंगी जोग ज्ञान ध्यान सिख नागे सकल जप तरंगी गो नानक संतन बलिहारा जो प्रभ की साध संगी। कल्याण महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तेरा मान हर हर मान नैन बैन श्रवण सुनिए अंग अंगी सुख प्राण रहाउ। एत उत दहत सरव्यो मेरे तने समान जदक तदत पेकी अर पुरक पत प्रधान सतसंग ब्रह्म पै मिटे कते नानक ब्रह्म ज्ञान। कल्याण महला पंजवा गुण नाद तुन आनंद बेद कथत सुनत मन मना मिल संत मंडली रहाउ।

कहाँ करो तरत ध्यान ज्ञान सतरंगे अजर पद कैसे जरो रहाओ। बिजन महेश सदमन इंद्रा कैदर शरण परो काहु पहराज काहु पै सुरगा कोट मदे मुक्त काहु जन कहो नानक नाम रस पाई साधु चरण गाओ। कल्याण महला पंजवा प्राण दयाल पुरख प्रभ सके गर्भ जोन कलकाल जाल दुख बिना संहार रखे रहाओ। नाम धारी शरण तेरी प्रभ दयाल टेक मेरी अनाथ दीन आसवंद नाम स्वामी मन है मंद तुझ बिना प्रभ कछु ना जानू सर्व जोग मैं न तुम पछानू। हर मन बसे निसबासरो गोविंद नानक आसरो कल्याण महला पंजवा मंत्र जापिए भगवान गुरु पूरे सो प्रसन्न पाई सदा सुख कल्याण रहाओ। सर्वकार सद पाए गाय गुण गोपाल मिल साध संगत प्रभु सिमरे नाटे दुख काल कर कृपा प्रभ मेरिया करु दिन रैन सेव नानक दास शरणागति हर पुरख पूर्ण देव कल्याण महला पंजवा। प्रभ मेरा अंतर जामी जान कर कृपा पूरन परमेश्वर ने चल सचवद निशान रहाओ। हर बिन आनन कुछ समरथ तेरी आस तेरा मन दान सर्व कटा के तद स्वामी दे सुपैरन खान। सूरत मत जित राई सुबा रूप रंग तन मान सर्व सुख अनद नानक जप राम नाम कल्याण कल्याण महला पंजवा। हर चरण शरण कल्याण करण प्रभ नाम पत तत पावनो रहा सतसंग जापन सांग जमकाल तसना खावनो। मुगत जुगत अनक सूक हर भगत लवै न लावनु प्रभ दरस लिबद दास नानक बौर जोर न तावनु। कल्याण महला चौथा अष्टपदिया एक ओंकार गुर प्रसाद रामा राम राम सुनमन पी जय हर ना अमृत रस मीठा गुरमत सहजे पी जय रहाउ। काष्ट मै जो है बसंतर मत संजम कार कटी जय राम नाम है जुत सुभा जत गुरमत काट गलाई जय नौदर वाजे नवदर पीकर अमृत समय चोई जय। कृपा कृपा कृपा कर प्यारे गुर सबदी हरस पी जय काया नगर नगर है ने कुछ सौदा हरस की जय। रतन लाल अमोल अमोलक सतगुर सेवा ले जय सतगुर अगम अगम है ठाकुर रव सागर भगत करी जय। कृपा कृपा कर दीन अमसान एक बूंद नाम मुख दीजय लालन लाल लाल है रंगण मन रंगन कौ गुर दी जय। राम राम राम नगराते रस रसकट रस रसक गटक नित पीजय बसदा शब्द दीप है सागर कट कंचन काड़ तरी जय। मेरे ठाकुर की जन इनु न बाच हर मांग हर रस दीजय साख नर प्राणी सत भूख नित पूकन पूख करीजय। तावत ताई तावे प्रीत माया लक कुशन कौ बेत दीजय। हर हर हर हर हर जन उत्तम के उपमा तेन दीजय। राम नदल और उपजन नानक कृपा करीजय कल्याण महला चौथा। राम गुर पारस परस करीजय निर्गुणी मनोरथ फीके मन सतगुर पारस की जय रहाउ। सुरग मुक्त पै गुण वाचन आस आस करीजय दर्शन जिन मुक्त न मांगे मिल दर्शन त्रिवतन मन तीजय। माया मोह सबल है भारी मोह कालक दाग लगी जय। मेरे ठाकुर की जन अलिपत है मुक्ति कज अमर गाय संपंकना की जय। चंदन वास प्यंकम वेड़ी कवि मिल गया चंदन ली जय काट कड़ गुर ज्ञान करारा बिक शीद शीद रस पी जय। आन आन समदा बकिनी पल बै सुंदर पसम करी जय। मां उग्र पाप सागत नर की निमल साधु लोकी दी जय। साधु साधु साजन नेक जन अंदर नाम धरी जय। परसन परस पाई साधु जन जन हर भगवान दखी जय। सागत सूत बहु गुरजी भरिया क्यों कर तान तनी जय। तंद सूत जनिकस नाही साध संग न की जय। सतगुरु साध संगत है नेकी मन संगत नाम रवि जय। अंदर रतन जवे हर मानक गुर कृपा थी ली जय। मेरा ठाकुर बड़ वड्डा है स्वामी मेरा ठाकुर वड्डा वड्डा है स्वामी। हम क्यों कर मिला मलि जन नानक मिल मलाय गुर पूरजन का पूर्ण दीजय। कल्याण महला चौथा। रामा राम राम राम रविजय साधु साधु साध जन नेकी मिल साधु हर रंग की जय रहाओ। जी अजंद सब जग है जेता मन डोलत डोल करी जय। कृपा कृपा कर साधु मिलावो जग थमन को थम दी जय। बसदा तला तला सब ऊपर मिल साधु चरण रो ली जय।
ਅਧ ਉਤਮ ਹੋਵੋ ਸਭ ਸਿਸ਼ਟ ਚਰਨ ਚਲ ਦੀਜੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਤ ਭਲੀ ਸਭ ਨੇਕੀ ਆਣ ਪਾਣੀ ਸਖਤ ਭਰੀ ਜੈ ਮੈਣ ਦੰਤ ਨਿਕਸੇ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਚਾਰ ਚਬ ਚਬ ਹਰਸ ਪੀਜੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਬਹੁ ਕੀਆ ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਪੁਰਖ ਮਿਲੀਜੈ ਗੁਣ ਰਾਮ

नित उठ उठ जूझ करी जय, अंगीकार करो रख लेवो, गुरपुरा काट कटि जय। अंदर अगन सबल अत बिकिया, हे वसीतल सबद गुर दी जय, तन मन शांत हो अधिकाई रोग काट।

दान प्रतकार त्रितरांग तत् विचारी। अकथो कथो क्या मैं जोर भगत करी कराए मोर, अंदर वसा चुका मैं मोर, किसे भी जो दूजा नहीं होर। गुर का शब्द महारस मीठा, ऐसा अमृत अंदर डीठा, जिन चाक्या पूरा पद होए, नानक धराप्यो तान सुख होई, प्रभाती महला पहला। अंदर देख शब्द मन मानिया, आवरण रंगन हर एन सजिया, देख समलित सही के सरकारा। मेरा प्रभराग कण अतरूढ़ो दीन दयाल, प्रीतम मनमोहन आदरस लाल, सगुड़ो रहाउ ऊपर कूप गगन पनहारी, अमृत पीवनहारा। जिसकी रचना शब्द जान है, गुरमुख ज्ञान विचारा, बसरी किरण रस कमल बगासे, ससकर सूर समाया। काल बिंदस मनसा मन मारे, गुर प्रसाद प्रभ पाया, अंदर रस रंग चलूलै राति दूजा रंग न कोई। नानक रसन रसाए राति रब राय मैं प्रभ सोई, प्रभाती महला पहला। बारह मैं रावल कपजावै, चौ छह मैं सन्यासी। जोगी कापड़िया सर कुत्ते मन शब्द गलफासी, शब्द रते पूरे बैरागी, औहट हस्त मैं भेखिया साची, एक पाए लिव लागी रहाउ। ब्राह्मण वाद पढ़ै कर क्रिया, करनी कर्म कमाए, बिन बोझे के सूझै नाए, मन मुख विचड़ दुख पाए। शब्द मिले से सूचाचारी, साची दरगह माने, अनंत नाम रतन लिव लागे, जुग जुग साज समाने, सगले करम धरम सुजम जाप तब तीर शब्द वसई। नानक सतगुर मिले मिलाया, दुख पराचित काल नसे, प्रभाती महला पहला। संता की रेण साध जन संगत हर कीर्त, तरतारी कहां कर पुरा जम डर पै, गुरमुख हृदय मुरारी। जल जाओ जीवन नाम बिना, हर जप जाप जपो जप माली, गुरमुख आवे साध जना रहाओ। गुरबदेश साज सुख जाको, कथ उपमा कही है, लाल जवि हर रत्न पदार्थ, खोजत गुरमुख लही है। चीना ज्ञान ध्यान दिन साचो, एक शब्द लिव लाव है, निरालंब निरहान है, केवल निरपताड़ी लाव है। सायर शब्द पर निज निर्मल, उलटी नाव तराव है। बाहर जाता उठा ग्रहाव है, गुरमुख सहज समाव है, सो गिरही सो दास उदासी, जिन गुरमुख आप पछाणिया, नानक कह अवरने दूजा साच, शब्द मन मानिया। राग प्रभाती महला तीजा, चौपदी एक ओंकार, गुर प्रसाद गुरमुख विरला को बूझै, शब्द रहा समाई। नाम रते सदा जुग पावै, साच रह लिवलाई, हर नाम जप हो जन पाई, गुर प्रसाद मन अस्तिन होवै, अनदिन हार रस रह आकाई रहाउ। अनदिन भगत करो दिन राति, इस जुग का लाह पाई, सदा जन निर्मल मैल न लागे, सच नाम चित लाई। सुख सिगार सतगुरु दगाया, नाम वड्डी वड्याई, अकुट भंडार भरिक तोड़ न आवै, सदा हर सेव पाई, आपे करता जिसनु देवै, तिस वसै मन आई। नानक नाम ध्याई, सदा तो सतगुर दिया दिखाई, प्रभाती महला तीजा। निर्गुण यारी को बख्श लै, स्वामी आपे लह मलाई, तो बेंद्र अंत न पाया, सबदे देहु बजाई। हर जीत दिटो मल जाई, तन मन अरबित आगे रखो, सदा रहा सरनाई, रहो अपने पान सदा रख, स्वामी हर नामो दे वड्याई। पूरे गुरते पाणा जापै, आन दिन सहज समाए, तेरा पाणा भगत जिद पावे, आपे बख्श मलाई, तेरा पाण सदा सुख पाया।

काया नगर वस्यो कर मंदर जब शोभा गुरमुख कृपा हलत पाजन भय सोले मुख ऊजल गुरमुख तरपा अनपो हर हर हर लिवलागी हर उर धार्यो गुर निमक फा कोड कोड के दोक सब जन के हर दूर की एक पल पा तुमरे जन तमहि ते जाने प्रभ जानो जन दे मुख पा हर हर आप तरियो हर जन मैं जन नानक हर प्रभ एक पा प्रभाती महला चौथा गुर सतगुर नाम दृढ़ायो हर हर हम मुए जीव हर जप बा तन तन गुरु गुर सतगुर पूरा बिक डुबदे बाह दे कड़बा जप मन राम नाम अर्धम्ब उपजम्ब उपाय न पाई कतो गुर पूरे हर प्रभ लंब रहाओ राम नाम रस राम रसायन रस पिया गुरु रस बा लोह मनोर कंचन मिल संगत हर उर धार्यो गुर हर बा हम बिखिया निदलो बल बाने पुत कला तम लभ बा तन पग संतना सेवे काबू ते मन मुख भूमर भरबा।

मन मरै ना माया मरै जन कचकिया सोई जानै शब्द विचार पव सागर तरै रहाउ माया संज राजी अहंकारी माया साधना चलै प्यारी माया ममता है भव रंगी मन नावै गो साधना संगी ज्यो मन देखे पर मन तैसा जैसी मनसा तैसी दसा जैसा कर्म तैसी लिवलावै सतगुर पूछ सहज कर पावै राग नाद मन दूजे पाए अंदर कपट महा दुख पाए सतगुर पीटै सो जी पाए सच्चे नाम रह लिवलाए सच्चा शब्द सच कमावै साची बाणी हर गुण गावै निज कर वास अमर पद पावै तादर सच सोभा पावै गुर सेवा बिन भगत न होई अनेक जतन करै जे कोई हमै मेरे शब्द कोई निर्मल नाम सह मन सोई इस जग मह शब्द करनी है सार बिन शब्द मोर मोह गबार शब्द नाम रखे उरधार शब्द गदमित मुख द्वार अवर नाही कर देखन हारो सच आप अनूप अपारो राम नाम उत्तम गत होई नानक खोज लह जन कोई प्रभाती महला पहला माया मोहे सकल जग छाया कामन देख काम लुभाया सोध कंचन सोहित बधाया सब कुछ अपना एक राम पराया ऐसा जाप जपो जप माली दुख सुख परहर भगत निराली रहाओ गुरन तान तिर अंत न पाया साज शत माहे सुमाया आवा गौन दुद आवरचाया सही भगत जिन साज चित लाया ज्ञान ध्यान नर निर्बाणी गुर पेटे कोई ना जानी सगल सरोवर जोत समानी अन रूप मिठो कुरबानी पाओ भगत गुरमती पाए हमें विचो शब्द जलाए तावत रख ठाकर हाय सचा नाम मन वसाय बिस्म बनोदर है परमाधि गुरमत मान एक लिव लागी देख निवारया जल में आगी सो बुझे हमें बड़ भागी साधु गुर सेवे परम जगाए अड़दन जागे सच लिव लाए एको जाने अमरना कोई सुख दादा सेवे निर्मल होए सेवा सुरत पद विचार जाप तब संजम हमें मार जीवन मुक्त का सदा सनाए सच्ची रहत सच्चा सुख पाए सुख दादा दुख मिटन हार आवरना सीजस बीजे कारा तन मन तन हर अगे राखिया नानक कहे महारस जाकिया प्रभाती महला पहला निवले कर्म भयंगम पाटी रे जग पूरक कुंभ करै बिन सुगुर के सोजी नाहि भरमे बोला बूट मरे अंधा भरिया पर परतोवे अंदर की माल कदे नाल है नाम बिना फोकट सब कर्मा ज्यों बाजी गार भरम भुलै कट कर्म नाम निरंजन सोए तुगुण सागर अवगुण मोहि रहाउ माया धंधा तावनी दुर्मद कार बेकार मूर्ख आपक नायदा बुझ न सकै कार मनसा माया मोहनी मनमुख बोल खुवार मजन झूठा झंडाल का फोगट चार सिंगार झूठी मन की मत है करनी बाद विवाद झूठा वजह करना है कसम न पावै साध बिन नाम होर कमावना फिका आवै साध दुष्टि सभा बिगुची है बिकवाती जीवन बाद इब्र भोले मर होना कोई सतगुर सेव सदा सुख होई बिन सतगुर मुक्त कन्या न पाई आवे जाहि मरह मर जाय इहो शरीर है तरह गुण धात इसनु व्यापै सुख संताप सो सेवज समाई न बाप विचो जुगत सना अर आप जह जह देखा तह तह सोई बिन सतगुर पेटे मुक्त न होई हृदय साथ इहो करनी सार होर सपा खंड पूज कवार दबदा जुगत तद पछाण कर बार एको कर जान ए मत शब्द है सार जित दबदा पाथ पावे सार

रतन पेख दुख नासना बसो संग गोपाल सगल सुख रास हर हर हर रिद सिद्ध नव निद बसे जिस सदा कर पर त्रिय रावण जाहे सही तां लाजिए नित प्रत हिर है पर दर्ब जिदर कत ढाकी है हर गुण रमत पवित्र सगल कुलतारी हर हां सुनते पे पनीत पार ब्रह्म विचारी ऊपर बने आकाश तले धर सोहती दै दिस चमके बीजल मुख को जोहती खोजत फिरो विदेश पियो कथ पाई है हर हां जे मत को वे भागत दर्श समाई है डिठे सबे थाव नहीं तुझ जेहा बदो पुरख बिदाते तां तू सोहया बसदी सगना पार अनूप रामदास पर हर हां नानक कसमल जाहे नाइये रामदास सर चातरक चेत सो साजन चाहिए जित संग लागे प्राण तिसे को आही है बन बन फिर तो दास बूंद जग जल कारणे हर हां त्यों हर जन मागे नाम नानक बलहारणे मित का चित अनूप मरम न जानिए गाहक गुनी अपार सो तत पहचानिए चित्ते चित समायता होवे रंकना हर हां चंचल चोरे मारता पावे सचतना सुपने उबी पई गहो की ना अंचला सुंदर पुरख बिराजत पेख मन बंचला खोजो ताके चरण कहो कथ पाइये हर हां सोई जतन बताए सखी प्रियो पाइये नैन न देखे साल से नैन बिहालिया करना सुन ही नाद करन मंद का लिया रसना जपे ना नाम तिल तिल कर कटिए हर हां जब बिसरे गोबिंद राय दिनों दिन खटिए पंकज पाते पंक महासद महामद गुम्फिया अंग संग उर्जाए बिसरते सुम्पिया है कु ऐसा मीत जे तोरे बिखम गांठ नानक एक श्री धरनाथ जे टूटे ले सांठ तव दसा अनेक प्रेम प्रव कारणे पंच सतावे दूत कवन विद मारणे तीखन बाण चलाए नाम प्रत्याय हर हां महा बिखादि घात पूरण गुर पाइय सत गुर कीनी दात मूल ना निखुटी खावो पुंचो सब गुरमुख छुटी अमृत नाम निदान दिता तुस हर नानक सदा अराध कदे ना जाहे मर जिथे जाए पग सो थान सुहावना सगले होए सुख हर नाम त्यावना जी कर जयकार निंदक मोए पच साजन साजन मन आनंद नानक नाम जप पावन पतत पनीत कते नहीं सेवी है झूठे रंग कुआर कहां लखे भी है हर चंदौरी पेख काहे सुख मान्या हर हा हो बलियारी तिने जे दरगह जानिया कीने कर्म अनेक गवार बेकार कन महा दुर्गंधत वास सठ का चार तन फिर तो गर्भ गुबार मरण न जानी हर हर चंदौरी पेख काहे सच मानी जिसकी पूजे औद तिसे कौन राखई बैदक अनको पाव कहां लो पाखई एको चेत गवार काज तेरे आवई हर हां बिन आवे तन चार वृथा सब जावई औखद नाम अपार अमोलक पी जई मिल मिल खावे संत सगल को दी जई जिसे प्राप्त होए तिसे ही पावणे हर हां होम बलहारी तिने जे हर रंग रावणे वैदा संदा संग इकट्ठा होया औखद आए रास बिच आप खलोया जो जो उन्हा कर्म सुकर्म होए पसरिया हर हां दुख रोग सब पाप तन ते खिसरिया चौ बोले महला पंजवा।

नीच कीच निमृत कनी करनी कमल जमाले कमल नैन अंजन श्याम चंद्र बदन चित चार मूसन मगन ब्रह्म स्यों खंड खंड करहार मगन प्यो प्रिय प्रेम स्यों सूतन सिमरत अंग।

अमरस पियो। कबीर कंचन के कुंडल बने ऊपर लाल जड़ाओ, दिसे दादे कांजो जिन्हें मन नाही नाओ। कबीर ऐसा एक आद जो जीवत मृतक होए, निरपय होए के गुण रवे, जत पेखों तत सो।

बांस सुगंध ना होए, कबीर दीन गवाया दुनी सो दुनी न चाली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफले अपने हाथ।

कबीर संत मुए क्या रोइए, जो अपने ग्रह जाए रोव साकत बापरे, जो हाटे हाट बिकाए। कबीर साकत ऐसा है जैसी लसन की खान, कोने बैठे खाइए प्रगट होए निदान।

कबीर गर्भ ना कीजिए ऊंचा देख वास, आज काल पोए लेटना ऊपर जामे घास। कबीर गर्भ ना कीजिए रंक ना हसीए कोय, अजू सुनो समंदर में क्या जानो क्या होए। कबीर गर्भ ना कीजिए देही देख सुरंग, आज काल तज जा हो गए ज्यों कांचरी पोयंग।

कबीर मन निर्मल पया जैसा गंगा नीर, पाछे लागो हर परे कहत कबीर कबीर। कबीर हर दी पीए री चूना उजल पाए, राम स्नेही तो मिले दोनों बरन गवाए। कबीर हर दी पीरतन हरे चून चहना रहाए, बलहारी इस प्रीत को जय जात बरन कुल जाए। कबीर मुक्त द्वारा संकरा राई दसें पाए, मन तो मैगल होए रहो निकसो क्यों कह जाए। कबीर ऐसा सतगुर जे मिलाए, तुठा करे पसाओ मुक्त द्वारा मोकला सहजे आवो जाओ।

जस लिख न जाए। कबीर जात जलाहा क्या करे हृदय बसे गोपाल, कबीर रमैया कंठ मिल चुगे सर्ब, चुके सर्ब जंजाल। कबीर ऐसा को नहीं मंदिर दे जराए, पांचों लड़के मार के रहे राम लियो लाए।

औकट काट। कबीर बन की दादी ला करी, ठांडी करे पुकार, मत बस परो लोहार कह जा रे दूजी बार। कबीर एक मरण ते दोए मुए, दोए मरण ते चार, चार मरण ते छे मुए, चार पुरख दोए नार। कबीर देख देख जग ढूंढिया, कहू ना पाया ठौर, जिन हर का नाम ना चेते ओ कहां पलाने और। कबीर संगत करिए साथ की, अंत करे निर्बाहो, साक संग ना कीजिए जानते होए बिना हो। कबीर जग में चेत्यो जान के, जग में रहो समाए, जिन हर का नाम ना चेत्यो बादे जन्मे आए। कबीर आसा करिए राम की, अबरे आस निरास, नरक परे ते मानी जो हर नाम उदास।

करे जो राम न करे सहाय, जय जय डाली भक्त रो सोई मुर मुर जाए। कबीर अबरे को उपदेश ते मुख में पर है रेत, रस बिरानी राख ते खाया करका खेत। कबीर साधु की संगत रहो जो की भूसी खाओ, होनहार सो होए है साकत संग ना जाओ।

जाए अपने काय, कबीर हरका सिमन छाड़ के अहोई राखे नार, गद ही होए के औतरे पार से मनचार, कबीर चतराई अत कनी हर जप हिरदे माहे, सूरी ऊपर खेलना गिरे ता ठार नाहे, कबीर सोई मुख तन है।

रहो हरक गुन गाए। कबीर चुगे चितारे पी चुगे चुग चुग चेतारे, जैसे बचरे कूंज मन माया मम तारे। कबीर अंबर घन हर छाया, बर्ख भरे सरताल, चात्रक ज्यों तरसत रहे तिनको कौन हवाल। कबीर चकई जौ निस बिछरे, आए मिले प्रभात, जो नर बिछरे राम स्यो ना दिन मिले ना रात। कबीर रहन आयर बेछोरिया, रौरे संख मजूर, देबल देबल ताड़ ही देसे उगवत सूर। कबीर सूता क्या करे, जागरोए पै दुख, जाका वासा गोर में, सो क्यों सोबै सुख।

ताही के संग लाग, कबीर संत की गल ना छोड़िए मार्ग लागा, जाओ पेकती पनी तो ए पेट तजपिए नाओ, कबीर साक संग ना कीजिए दूर जाइए पाग, बासन कारो परसिए तो कछ लागे दाग, कबीरा राम ना चेत्यो जरा पहुंचो आए, लागी मंदिर द्वार ते आप क्या काढ़िया जाए, कबीर कारण सोप्यो जो कीनो करतार, तिसमें दूसर को नहीं एक है सृजनहार, कबीर फल लागे फलन पाकन लागे आंब, जाए पहुंचे खसम को जो बीच ना खाई कांब, कबीर ठाकर पूजे मोल ले मन हट तीर्थ जाहे, देखा देखी स्वांग तर पूले पटका खाए, कबीर पान परमेश्वर किया पूजे सब संसार, इस प्रभा से जो रहे बूढ़े काली तार, कबीर कागद की ओबरी मस के कर्म कपाट, पाहन बोरी पृथ्वी पंडित पाड़ी बाट, कबीर काल करंता अबे कर अब करता सोए ताल, पाछे कछु ना होएगा।

जब ही पाईऐ पारखू तब हीरन की साट, कबीर हर हीरा जंजौरी लैके मांडे हाट। जब ही पाईऐ पारखू तब हीरन की साट, कबीर राम परे हर सिमरिए ऐसा सिमरो नित, अमरा परबासा करो हर गया बहोरे बित। कबीर सेवा को दोए पले एक संत इक राम, राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम। कबीर जह मार्ग पंडित गए पाछे परी बहीर, एक अवकट काटी राम की ते चढ़ रहे हो कबीर। कबीर दुनिया के दोखे मुआ चालत कुल की कान, तब कुल किसका लाज सी जबले तरे मसान। कबीर डूबो गेरे बापरे बहु लोगन की कान, पारुसी के जो हुआ तू अपने पी जान। कबीर पली मधुकरी नाना बिद को नाज, दाबा काहू को नहीं बड़ा देश बडराज। कबीर दावे दाजन होता है निर्दावे रहे निसंक, जो जन्न निर्दावे रहे सोगने इंद्र सो रंक। कबीर पाल समूहा सरबर परा पीके, पीना सके कोई नीर, भाग बड़े तै पायो तुम पर पियो कबीर। कबीर प्रभाते तारे खिसे त्यों एओ हो त्यों एहो खिसे शरीर, ए दोए अखर ना खिसे जो सो गह रहे हो कबीर। कबीर कोठी काट की द दिस लागी आग, पंडित पंडित जल मुए मूर्ख उबरे भाग। कबीर संसा दूर कर काग दे बिहाए, बावन अखर सोध के हर चरणी चितलाए। कबीर संत न छाड़े संत, जो कोटक मिले असंत, मलिया गर पिंगम प्यो ता शीतलता ना तजंत। कबीर मन शीतल पया पाया ब्रह्म ज्ञान, जिन ज्वाला जग जारिया सो जन के उदक समान। कबीर सारी सिरजनहार की जाने नाही कोए, कह जाने आपन तनी कह दास दीवानी होए। कबीर पली पई जो पौ परिया, दिसा गई सब पूल, और अगर पानी पिया जाए मिले ओ टल कूल।

जह अन भौ तै पै नहीं जय भौ तै हन्नाए। कहो कबीर विचार कहे संत सुनो मन माए। कबीर जिन्हों किछ जानिया नहीं तिन सुख नींद बेहाए। हमहू जो बूजा बूजना पूरी परी बलाए। कबीर मारे बहुत पुकार।

एक समाना एक कबीर जाकर साधन सेवी है हर की सेवा नाहे ते कर्म अरहट सारखे पूत बसे तिन माए। कबीर गुंगा हुआ बाबरा बहरा हुआ कान पावो ते पिंगल पया मारिया सतगुरबान।

परे कबीर लागी प्रीत सुजान स्यों पर जे लोग अजान ता स्यों टूटी क्यों बने जाके जी परान। कबीर कोठे मंडप हेत कर काहे मरो सवार कारज साढ़े तीन हाथ कनिता पौने चार। कबीर जो मैं चितवे ना करे क्या मेरे चितवे होए अपने।

पुकार रात दिवस के कूकने कबू के सुने पुकार कबीर काया कजली बन पया मन कुंचर मैं मंत अंकस ज्ञान रतन है केवट बिरला संत।

हर फल पंखी केल करंत, कबीर दाता तरबर दया फल उपकारी जीवंत, पंखी चले दिसावरी बिरखा सुफल पलंत, कबीर साधु संग प्राप्ति लिखिया होए ले लाट, मुक्त पदार्थ पाइये ठाक ना अवगट घाट, कबीर एक खरी आदि करी आदि हूं ते आद, भक्तन सेती गोस्ते जो की नौ सो लाभ, कबीर भांग माछली सुरापान जो जो प्राणी खाहे, तीर्थ व्रत नेम किए ते सबै रसातल जाहे, नीचे लोइन कर रहे हो ले साजन कट माहे, सब रस खेलो पी सो किसी लखावो नाहे।

रत बिन तन ना होए, जो सर ते अपने तित तन, लोभ रत ना होए, पै पई तन कीन होए, लोभ रत विचों जाए, जो बैसंतरता

अमृत प्रवाह सार अतल भंडार पर परे ही ते परे अपर अपार पर आपनो पावन कर मंत्र ना दूसरो तार ओपत पर लो एक कै निमक तूं कर।

चारों मित्र न पुत्र कलतर साजन सख उल्टत जात बिरकी चारों दीन दयाल पुरख प्रभ पूर्ण चिंचन सिमरो अगम अपारो श्रीपतनाथ चरण नान।

प्रसाद सोई पुरख तन करता कारण करता हर करण समर्थो सतगुरु तन नानक मस्तक तुम जिन धरयो हथो सतगुर तन नानक मस्तक तुम धरयो जिन हथो ता धरयो मस्तक हत सहज अमे उठो छज सुर नार गण ग मुन बोयो अगाज मारियो कंट काल गर्ज धावत लियो बरज पंच पूत एक कर राख ले समझ जग जी तो गुरुद्वार खेले समत्सार रथ उन मन लिव राख निरंकार कौ कीर्त कल सार सबदी मझार लहना जगत तर गुर पर

अरे सत्संग सह सार जागी ले गुर बीचार नी मरी भूत सदीप परम प्यार कौ कीर्त कल सहार सबदी मजार सपत दीप मजार लहना जगतर गुर परसमरार तैतो दृढ़ो नाम अपार बिमल जास बेथार साधक से सो जन जिया को आधार तू ता

एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोई पुरख सिवर साचा जाका एक नाम अचल संसारे जिन भक्त पव दिल तारे सिमरो सोई नाम प्रधान तित नाम रसक नानक लैना थप्यो जैन सरब सिद्धि काप जन कल सुबुद्धि कीर्त जन अर्द अमरदास बिस्तीरिया कीर्त रब किरण प्रगट संसारे साख तरोबर मबल सरा उत्तर दखणे पबर पश्चिम जय जयकार जपंथ नरा हर नाम रसन गुरमुख बरदायो उल्ट गंग पश्चिम धरिया सोई नाम अचल भक्ते पवतारण अमरदास गुर को फुरिया सिमरे सोई नाम जख हर के नर साधक सिद्ध समाध हरा सिमरे नकी अतर अबर धूरू मंडल नारदार्द प्रहलाद वरा ससियर सूर नाम अलासे सैलो जिन उतरिया सोई नाम अचल भक्ते पवतारण अमरदास गुर को फुरिया सोई नाम सिवर नाम नाथ निरंजन शिव संकात समुतरिया चवरासी सिद्ध बुद्ध जित राते अम्बरीक भव जल तरिया उदो अकरू तलोचन नामा कल कबीर किल बखरिया सोई नाम अचल भक्ते पव तारण अमरदास गुर को फरिया तित नाम लाग ते तीस त्यावे जति तपीसर मन वसिया सोई नाम सिवर गंगे पितामे चरण चित अमृत रसिया तित नाम गुरु गंभीर गुरु मत सत कर संगत उतरिया सोई नाम अचल भक्ते पव तारण अमरदास गुर को फरिया नाम के संसार किरण रब सुरतर साखे उत्तर दक्षिण पूब देश पश्चिम जस भाखे जन्म तायो सकत जित नाम हरि देव निवासे सुर नर गण गंधर्व छे दर्शन आसा से पलो प्रसिद्ध जो तनो कल जोड़ कर त्यायो सोई नाम भक्त भव जल हरण गुर अमरदास तै पायो नाम त्यावे देवते तीसर साधक सिद्ध नर नाम खंड ब्रह्मंड तारे जय नाम समाद्यो हर सोग समकर सहारे नाम सिरोवण सर मैं भक्त रे लिवतार सोई नाम पदार्थ अमर गुर तुसक दियो करतार सत सूरो सील बलवंत सत पाए संगत सगन गुरु मत निर्वय लीना जिस धीरज तुर तबल तज तुजा सेत बैकुंठ बीना जिस धीरज तुर तबल तुजा सेत बैकुंठ बीना परसे संत प्यार जे करता रहे संजोग सतगुरु सेव सुख पायो अमर गुर की उस जोग नाम नावन नाम रस खान अर भोजन नाम रस सदा चाय मुख मिष्ट बाणी धन सतगुर सेव जिस पसाए गत अगम जानी कुल समूह समूह तरे पायो नाम निवास सिक्यथ जन्म कल चिरे गुर परस्यो अमर प्रगास बारज कर दाहणे सिद्ध सरमुख मुख जो वै रिद बसे बांग जो तीन लोकांतर मोह है हृदय बसे अकी ही ओ सोई सोए रस तिन ही जातो मुखो भक्त उचरे अमर गुर इत रंग रातो मस्तक निशान सचो कर्म कल जोड़ कर त्यायो परस्यो गुरु सतगुर तिलक सर्व इच दिन तिन पायो चरण ता परसक्यात चरण गुर अमर पवल राय हाथ ता परसक्यात हाथ लगे गुर अमर पै जी ता परसक्यात जीह गुर अमर पणिजे नैन ता परसक्यात नैन गुर अमर पखीजै सरवण ता परसक्यात सरवण गुर अमर सुनिजै सक्यात सोहियो जित ही बसे गुर अमरदास निज जगत पित सक्यात सो सिर जाल पणे जो सिर निवै गुर अमर नित ते नर दुख नह भुख ते नर निधन नौह कही है ते नर शोक नौ हुए ते नर से अंत न लइए ते नर सेब नौ करे ते नर सह सहस संपे ते नर दलिचे बहे ते नर उथप बिथपे सुख लह ते नर संसार में अपै पट रिप मद ते हे सक्यथ ते नर जाल भणे गुर अमरदास सुप्रसन्न जे तय पढ़ियो एक मन तरियो एक कर एक पछाण्यो नैन बैन मोहे एक एक दो ठाए ना जाण्यो सुपन एक प्रताख एक एक समय लीणो तीस एक अर पांच सिद्ध पैतीस ना खीणो एको जे लख अलख लखो जे एक एको जे अलख एको जे लाख लखो अलख है एक एक बरण्यो गुर अमरदास जाल पणे तू एक लोड़ै एक मन्यो जे मत गई जय देव जे मत नामे सम्मानी जे मत तलो चिंचित भक्त गंभीर है जानी रुक मांगद करतूत राम जम पुनित पाई अमरीक प्रहलाद शरण गोबिंद गत पाई
तै लोभ क्रोध तृष्णांत जी सो मत जल जानी जुगत गुर अमरदास निज भगत है देख दर्श पाव मुक्त गुर अमरदास परसिए पौम पातक बिनासै गुर अमरदास परसिए सिद्ध साधक आसासै गुर अमरदास परसिए ध्यान लइए पौ मुके गुर अमरदास परसिए अपौ लभे गौ चुकै एक बिंदु गण जो तौ रहे जा सुमंत्र जा सुमंत्र मान वह लह जालपा पदार्थ तड़े गुर अमरदास डिठे मिले सच नाम करतार सो दृढ़ नानक संग्रह हो ताते अंगद लहना प्रगट तास चरणे लिव रहे हो तेत कुल गुर अमरदास आसा निवास तास गुण कवन बखाणो जो गुण अलख गम तिने गुण अंत न जानो बोहिथो विधाते निर्मयो सब संगत कुल उदरण गुर अमरदास कीर्त करे त्राय त्राय तोय पास शरण आप नारायण कला तार जग में परवर्यो निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करियो जय कहते भरपूर शब्द दीपक दीपायो जय सिखे संग्रहो तत हर चरण मिलायो नानक कुल निमल अवतरियो अंगद लहण संगोए गुर अमरदास तारन तरण जन्म जन्म पास शरण तोए जप तप सत संतोख पिख दर्शन गुर सिखे शरण परे ते उभरे छोड़ जम पर की लिखे भक्त पाए भरपूर हृदय उचरे करतारे गुरगा हर दरिया पलक डोबनते तारे नानक गुण निमल अवतरी ओ गुण का गुण करतारे उचरे गुर अमरदास जिने सेवियो तिन दुख दरिद्र पर हर परे चिचित अरदास।

जब गुर देख सुब दिष्ट नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो फरमावे सो कहो गुर अमरदास कारण करन जीव तू रखे तिव रहो पिखे के गुर ज्ञान अर ध्यान तत् स्यों तत् मिलावे साचे साच जानिए एक चिते लिवलावे काम क्रोध वस करे पवन ओडंत न धावे निरंकार के बसे दे सो कंबुज बिचार पावे कालमय रूप करता पुरख सो जाने जिन किछ कियो गुर मिलियो सोए पिखा कहे सहज रंग दर्शन दियो रहो संत हो टोल साध बो तेरे डिठे सन्यासी तबसिए मुखो ए मिठे वर्ष एक हो फिरो किने नौ परचा लायो कहते कहती सुनी रहत को खुशी न आयो हर नाम छोड़ दूजे लगे तिने के गुण हो क्या कहो गुर दइए मिलायो पिखिया जीव तू रखे तिव रहो पैर समाज सनाओ ज्ञान है असंचड़ियो त्रम तनक कर गहो भक्त सीले सर लड़ियो पै निरपो हर अटल मन शब्द गुर निजा गड्डियो काम क्रोध लो मोह आपत पंच दूत बेखंडियो भलो पुहाल ते ज्योतना निरपत नाथ नानक बर गुर अमरदास सच सल भण तै दल जितो इब युद्ध कर कन हर बूंद बसोरो मावल कुसुम बसंत गणंत नावै रब सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पा

जास सिमरत अनतर। जाके दिख द्वारे काम क्रोध ही निवारे, जी होम बल बल जाऊं साचे बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर। राज योग तखत दियन गुर नामदास, प्रथमे नानक चंद जगत भयो, आनंद तारण मनुखे जन कियो परगास। गुर अंगद दियो निदान कथ कथा ज्ञान, पंच भूत वस कीने जमत ना त्रास। गुर अमर गुरु श्री सत कल जुग राखी पत, अगन देखत गत चरण कबल जास। साबिद मान्यो मन तबी पयो प्रसन्न, राज योग तखत दियन गुरु रामदास। रड जिस धारियो थर तौर ब्योम, अर पवन ते नीर सर अवर अनल अनाद कियो। सासरिख निस सूर दिन सैल तरु फल फुल दियो, सुरनर सपत समुद्र समुद्र के धारियो त्रिपवन जास। सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर प्रगास। कच्चो हो कंचन पयो सतगुर सरवणे सुनयो, बिखते अमृत हुओ नाम सतगुर मुख भणयो। लोह होयो लाल नदर सतगुर जत धारे, पाहण मान करे ज्ञान गुर कहो बीचारे। काठो श्री कंठ सतगुर कियो, दुख दरिद्र तिन ते तिन के गए। सतगुरु चरण जिन परस्या, से पशु प्रेत सुर नर पय। जाम गुरु होए बल तने क्या गर्व दीजै, जाम गुरु होए बल लख बाहे क्या कीजै। जाम गुरु होए बल ज्ञान अर ध्यान अनन पर, जाम गुरु होए बल शब्द साखी सो सच्चे कर। जो गुरु गुरु एन सजपै, दास पट बेनत कहे। जो गुरु नाम रिद मैं तरे, सो जन मरण दुहे थे रहे। गुर बिन कोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे। गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावे। गुर कर सच विचार, गुरु कर रे मन मेरे। गुर कर शब्द सुपन अगन कटे सब तेरे। गुर नैन बैन गुर गुर गुर गुर गुर करो, गुरु सत कब नल कह। जिन गुरु न देखियो नौ कियो, ते अकेथ संसार में। गुरु गुरु गुर कर मन मेरे, तारन तरन समरथ कल जुग सुनत समाद। शब्द जिस केरे फुन दुखन नास सुखदायक, सूरो जो धरत ध्यान बस्त तेह तेह नेरे। पूरो पुरख हृदय हर सिमरत, मुख देखत अग जाहे परेरे। जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत, गुरु गुरु गुर कर मन मेरे। गुरु मुख देख गुरु सुख पायो, होती जो प्यास पीयूस पिवन की। बंचत सिद्ध कौ बिद मिलायो, पूर्ण पौ मंठौर बसो रस बासन। स्यो जो दहंग दिसतायो, गोबिंद बाल गोबिंद पुरी सम। जलन तीर भी पास बनायो, गयो दुख दूर बरखन को। सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो, समरथ गुरु सिर हथ धरियो। गुर कीनी कृपा हर नाम दियो, जिस देख चरण अगन हरियो। निस्पास्तर एक समान ध्यान, सो नाम सुने सुत भान डरियो। पंदासो सो आस जगतर गुरु की, पारस भेट परस करियो। रामदास गुरु हर सत कियो, समरथ गुरु सिर हथ धरियो।

0: जियो भले चलन सबल फलन भक्त फलन कान कोर ने कलंक बजी डंक चढ़ दल रविंद जियो राम रवन दुर्त दवन सकल पवन कुशल करण सर्वभूत आप ही दे बाद देव सहस मुख फनंद जियो जरम करम मच कच होए परा जमना के कुल खेल खेलो जिन गिंद जियो नाम सार ही तार तज बिकार मन गे अंध सतगुरु सतगुरु सतगुरु गोबिंद जियो श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो गुर कया मान ने जिनदान सच जान मंत्र हे निसबासर होय कल्याण लहे परम गत जियो काम क्रोध लो मोह जन जन सो छड़ तो होमे का बंद काट साध संग रत जियो देह गए त्रेसने चित बिलास जगते चरण कमल सदा सिओ दृढ़ता कर मत जियो नाम सार ही है तार तज बिकार मन गे अंध श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो
1: सेवक कै भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका निरंकार प्रभ सदा सलामत कह ना सकै को तू कद का ब्रह्मा बिशन सिरे तै अगनत तिनको मोह भया मन मद का 84 लाख जोन उपाई रिजिक दिया सब हु को तदका सेवक कै भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका वाह वाह का बड़ा तमाशा आपे हसै आप ही चितवै आपे चंद सूर परगासा आपे जल आपे थल थम्हन आपे किया घट घट बासा

मोह माल बेवस कियो, काम गै केस पछाड़ियो, क्रोध खंड पर चंड, लोभ अपमान स्यो चाड़ियो। जन्म काल कर जोड़, हुक्म जो होए सो मन्ने,

सुजासव खाण्यो भगत जोग कौ जैत वार हर जनक उपायो शब्द गुरु पर कास्यो हर रसन बसायो गुरु नानक अंगद अमर लाग उत्तम पद पायो गुर अर्जुन घर गुर रामदास भगत उत्तर आयो वड भागी उन मान्यो रिद शब्द बसायो मन माणक संतोखियो गुर नाम दृढ़ायो अगम अगोचर पार ब्रह्म सतगुर दरसायो गुर अर्जुन घर गुर रामदास अनभौ ठहरायो जनक राज बरताया सतजुग आलीना गुर शब्दे मन मान्या अपतीज पतीना गुर

परस प्रमाण सद जीवन अर्जुन अमोल आजुनी संभौ भय भंजन पर दुख निवार अपार अनंपौ अगह गहन भ्रम भ्रांत दहन शीतल सुख दातो असंभव उदवेओ पुरख पूर्ण विधातो नानक आद अंगद अमर सतगुर शब्द समायो धन धन गुरु रामदास गुर जिन पारस परस मिलायो जय जयकार जास जग अंदर मंदर भाग जुगत शिव रहता गुरपूरा पायो वड भागी लिव लागी मेदन पर सहता भय भंजन पर पीर निवारन कल सहार तोहे जस बकता कुल सोडी गुर रामदास तन धर्म तुझा अर्जुन हर भगता त्रम तीर गुरमत गभीर पर दुख विसारण शब्द सार हर सम उदार अहमेव निवारण महादान सतगुर ज्ञान मन चाओ न हुटै सतवंत हर नाम मंत्र नवनिध ना निखुटै गुर रामदास तन सर्ब मैं सहज चंदोआ ताणियो गुर अर्जुन कल उचरै तै राज जोग रस जानियो भय निरभौ माणियो लाख मह अलख लखायो अगम अगोचर गत गभीर सतगुर परचायो गुर परचै परवान राज मह जोग कमायो धन धन गुर धन अपार सर सुपर परायो गुर गम प्रमाण अजर जरियो सर संतोख समायो गुर अर्जुन कल उचरै तै सहज जोग निज पायो अम्यो रसना बदन बरदात अलख अपार गुरसूर शब्द होमै निवारियो पंचाहर निदलियो सुन सहज निज घर सहारियो हर नाम लाग जग उदरियो सतगुर हृदय बसायो गुर अर्जुन कल उचरै तै जनकह कलस दीपायो सोरठे गुर अर्जुन पुरख प्रमाण पारथो चालै नहीं नेजा नाम निशान सतगुर शब्द सवारियो भवजल सायर सेत नाम हरि का बोहिथा तो सतगुर संहेत नाम लाग जग उदरियो जगत उदाहरण नाम सतगुर तुठै पायो अब नाहे अवर सर काम बारंतर पूरी पड़ी ज्योत रूप हर आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद पयो तत् स्यो तत् मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमरत शतर गुर राम है दियो गुर रामदास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैण मूर्त पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जुन पिखो नैण सत रूप सत नाम सत संतोख धरियो उर आद पुरख परतख लिखियो अक्षर मस्तक तुर प्रगट ज्योत जगमगै तेज भू मंडल छायो पारस परस परस परस गुर गुरु कहायो पन मथुरा मूर्त सदा थिर लाए चित सनमुख रहो कलयुग जहाज अर्जुन गुरु सगल सृष्ट लग बित रहो तेह

न छाड्यो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी रामदास गुरु जगतारन को गुरजोत अर्जुन माहे तरी जग और न याहे महा तम में अवतार उजागुर आन कियो जग और न याहे महा तम में अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटिक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो यह पदत ते मत चूके रे मन भेद बिभेद न जान बियो परताच हृदय गुर अर्जुन कै हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो जब लो नहीं भाग लेलार उदय तब लो भ्रमते फिरते बहुतायो कल घोर समुद्र में बूढ़त थे कबहू मिट है नहीं रे पछुतायो तत विचार यह मथुरा जगतारन को अवतार बनायो जपयो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो कल समुद्र भय रूप प्रगट हर नाम उदाहरण बसै संत जिस हृदय दुख दारिद्र निवारण निर्मल भेख अपार तास बिन अवर न कोई मन बच जिन जानेओ भयो तेह समसर सोई तरन गगन नव खंड में

गुर अर्जुन सिर छत्र आप परमेश्वर दियो, मिल नानक अंगद अमर गुर, गुर रामदास हर पह गयो, हर वंश जगत जस संचरियो, सो कवन कह श्री गुर मुयो। देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो, हर सिंघासन दियो श्री गुर तह बैठायो। रहस कियो सुरदेव तोहे जस जय जय जंप है, असुर गए ते भाग पाप तिन भीतर कंप है। काटे सो पाप तिन नरहों के, गुर रामदास।

जियरा पर रहो मा को अवर न ढंग नानक गुरमुख छुट्टी है हर प्रीतम स्यों संग बाग मरे मन मा।

माया मोह जग भर में आ घर मुसै खबर ना होए काम क्रोध मन हिर लया मनमुख अंधा लोए ज्ञान खड़ग पंच दूत संघारे गुरमत जागै सोए नाम रतन परगासिया मन

ना पाए। मनमुख सेती संग करे, मोह कालख दाग लगाए। मोह काले तिन लोभिया, जासन जन्म गवाए। सत संगत हर मेल प्रभ, हर नाम वसै मन आए। जन्म मरन की मल उतरै, जन नानक हर गुण गाए। तुर हर प्रभ करतै लिखिया, सो मेटना ना जाए। जियो पिंड सब तिसदा, प्रतपाल करे हर राए। चुगल निंदक भुखे रुलमुए, इना हथ ना किथाऊ पाए। बाहर पाखंड सब कर्म करहै, मन हिरदय कपट कमाए। खेत शरीर जो बीजी है, सो अंत खलोआ आए। नानक की प्रभ बेनती, हर भावै बख्श मिलाए। मन आवन जान न सुजई, ना सुजै दरबार। माया मोह पलेटिया, अंतर अज्ञान गुबार। तब नर सुता जागया, सिर डंड लगा बहु भार। गुरमुखा करा उपर हर चेतिया, से पायन मोख द्वार। नानक आप ओहे उदरे, सब कुटंब तरे परवार। शब्द मरै सो मुआ जापै, गुर प्रसादी हर रस त्रापै। हर दरगै गुर शब्द सिंजापै, बिन शब्द मुआ है सब कोए। मनमुख मुआ अपना जन्म खोए, हर नाम ना चेत है अंत दुख रोए। नानक करता करे सो होए, गुरमुख बुढ़े कदे नाही। जिन्ना अंतर सुरत ज्ञान, सदा सदा हर गुण रव है अंतर सहज ध्यान। ओए सदा आनंद विवेक रह है, दुख सुख एक समान। तिना नदरी को आया, सब आत्म राम पछान। मनमुख बालक बिरध समान है, जिन्ना अंतर हर सुरत नाही। विच हो मैं कर्म कमाम दे, सब धर्म राय कै जाही। गुरमुख अच्छे निर्मले, गुर कै शब्द सुभाए। उन्ना मैल पतंग ना लगई, जे चलन सतगुर पाए। मनमुख झूठ ना उतरै, जे सौ धोवन पाए। नानक गुरमुख मेलियन, गुर कै अंक समाए। बुरा करे सो केहा सिजै, अपने रोहे आपे ही दजै। मनमुख कमला रगड़ै लुजै, गुरमुख होए तिस सब किश सुजै। नानक गुरमुख मन स्यों लुजै, जिन्ना सतगुर पुरख ना सेवियो। शब्द ना कीतो विचार, ओए मानस जून ना आखियन।

सतगुर का फुरमाया मन न सकी दुतर तरिया न जाए नदर करे जिसे अपनी सो चले सतगुर पाए सतगुर का दर्शन सफल है जो इच्छा सो फल पाए जिन्नी सतगुर मन्या हो तिन कैला गौ पाए नानक ताका दास है जे अन दिन रह लिव लाए जिन्या प्री प्यार बिन दर्शन क्यों तृप्ति है नानक मिले सुभाए गुरमुख एह मन रहसी है जिन्ना प्री प्यार क्यों जीवन पिर बाहरे जां सौ देखन अपना नानक थीवन पीहरे जिन्ना गुरमुख अंदर ने हो तै प्रीतम सच्चे लाया राती तै डे हो नानक प्रेम समाया गुरमुख सच्ची आस की जित प्रीतम सच्चा पाई है आनंदन रह आनंद नानक सहज समाई है सच्चा प्रेम प्यार गुरपूरे ते पाई है कबहू न होवै भंग नानक हर गुण गाई है जिन्ना अंदर सच्चा ने हो क्यों जीवन प्री विहूणिया गुरमुख मेले आप नानक चिरी विशुनिया जिनको प्रेम प्यार तो आप तो आपे लाया कर्म कर नानक लेहो मिलाए मैं जाचिक दीजै नाम हर गुरमुख हसै गुरमुख रोवै जे गुरमुख करे साई भगत होवै गुरमुख होवै सो करे विचार गुरमुख नानक पावै पार जिन्ना अंदर नाम निदान है गुरबाणी विचार तिनके मुख साध उजले तित सच्चै दरबार तिन बहदिया उठदिया कदे ना विसरै जे आप बख्शे करतार नानक गुरमुख मिले।

ब्राह्मण व्यर्था गयो जन्म, जिन की तो सो विसरै, सोरठ सोरस पीजी है कबहू ना फीका होए, नानक राम नाम गुन गाई है दरगह निर्मल सोए।

प्रभ धारई लगा रंग अपार को ना उतारई गुरमुख हर गुण गाए सहज सुख सारई नानक नाम निदान।

मृग तिसना पेख भुलणे वुठे नगर गंद्रब जिन्नी सच अराध्या नानक मन तन पते ते उदाहरण पार ब्रह्म समरथ पुरख जिस है उदारे नानका सो सिमरे

मारू मस्त अंग मेवारा प्रबल चंड कौशक उबारा खौखट औ पहुरा नद गाय अष्ट माल कौशक संग लाय पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सुत उठ है तान कलोल गायन तार मिलाव ही ते लंगी देव करियाई बसंती संदूर सुहाई।

असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहि जोर, असंख गल वड हत्या कमाहि, असंख पापी पाप कर जाहि, असंख कूड़े आर कूड़े फिराहि, असंख मलेश मल

को गज के बोलो। भावे मेरे अगे स्पीकर ने ते समझो सचखंड हरिमंदर साहब गुरु अर्जन देव जी ओही गुरु है हजूरी गुरु ग्रंथ साहब है। गूंज पाओ है एक बार फतेह नाल सांझ पाइए। संग दे क्यों जे संगिया ना करो बाणी पढ़ लगे। वाहिगुरु कह लगे संगिया ना करो भैड़े बोल कह लगे संग जया करो। हाजरी लाओ भैणा भी वीर भी गौर।

जिस पास बैठे आसो ही सबना दावे साहू। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला नौवा गण गोविंद गायो नहीं।

संतन केहु पुकार कौ नानक तेह भज मना पौ निध उतर हे पार सुख दुख जे पर सै नहीं लोभ मोह अभिमान कह नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान उस्तत निंदया नाहे जेहे कंचन।

नै पै मानत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। जिह बिखिया सगली तजी, लियो पेख बहराग, कहो

की और है कोई, चितवत रह उठ गौर, नानक फासी गल परे, जतन बहुत सुख के किए, दुख को क्यों न कोए।

बिन सहचन महमी तो जे प्राणी हर जस कहो नानक तेह जग जीत जह कट सिमरन राम को सो नर मुगता जान तेह नारे।

एक ओंकार सतगुरु प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगण संग अलापै अठ नंदन प्रथम राग भैरु बै करही पंच रागनी संग उचरहे प्रथम भैरवी बोलावले पुन्या के गावै बंगले पुन असली की पई बारी ए भैरो की पंचो नारी पंचम हरख दसाख सुनावै बंगाल मद माद बगावै ललत बलावल गाव ही अपनी अपनी भांत अष्ट पुत्र भैरव के गाव है गाय न पात्र द्वितीया माल को सक अलाप है संग रागणी पंचो थापै गोंड करी।

आय मारू मत अंग में बारा प्रबल चांड को सक उभारा खौ खटियो भौरा नद गाए अष्ट माल कौ संगलाय पुन्यायु हंडूल पंच नार संग अट सोता उठे तान कुलूला गहन तार मिलाव ही तेलंगी देव कर आई बसंती संदूर सहाय सरस अहिरी ले पार जा संग लाई पांचो आर जा सुरमा नंद पास कर आए चंद्र बिंब मंगलन सोहा सरस बाण ओ आए बनुदा गावे सरस बसंत कुमुदा अष्ट पुत्र में कह सवारी पुन आई दीपक की बारी काश।

प्रताप कालंका कुंतली और रामा कमल कुसुम चंप के नामा गौरा उकनरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक कह जाना सब मिल श्री राग वै गावै पंचो संग बरंगन लावै बैरारी करनाटी थरी गवरी गावै आसावरी तै पाछै सिंध भी आलापी श्री राग स्यों पंचो थापी।

अहनिस सहज सुभा दर्शन परसें गुरु का जन्म मरण दुख होवै सिबत खसाम दी नूर अरसों कुरसों तो द

तनासरी महला पंजवां घर बारवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद बंदना हर बंदना

गुण गावहु गोपाल राए रहाउ वड्डा भाग भेटे गुरदेवा कोट पराद मिटे हर सेवा चरण कंबल जाका मन रापै सोग अगन तिस जन ना ब्यापै सागर तरिया साधु संगे निरपौ नाम जपो हर रंगे पार धन दोख किछ पाप ना फेड़े जम जंदार ना आवै नेड़े त्रिश

बहुत बहुत धन्यवाद गुरु की सत संगत का। आप सारिया संगत साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पहले प्रकाश गुरपुरब दियां लख लख वधाइया, गुरु अर्जन देव महाराज जी के गुरता गद्दी गुरपुरब दियां बहुत बहुत वधाइया। एक बेनती आई है जी, किसी भैन का परस ग्रे कलर के विच गुम होया है, जे किसी नूं मिले तो वह दफ्तर के विच पहुँचाउण की कृपालता करो, ये बेनती प्रवान करनी। आओ इस तरह गुरबाणी कीर्तन नाल जुड़े रहिए, अगले समय वास्ते सेवा निभा रहे ने बहुत ही सत्कारयोग भाई त्रिलोक सिंह जी पौंटा साहब वाले, उन्होंने जथे पासों गुरबाणी के कीर्तन सरवण करके लाए प्राप्त करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा।

जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु प्यारी सत संगत आप सत संगत वडभागे हो जो सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर मिल बैठ के इलाही बाणी सरवण करके अपने जीवन दियां कड़ियां नूं सफला बना रहे सतगुरु कृपा करन। सभना दियां हाजरियां दर प्रवान करन, दरों करों गुरसिखी जीवन दी दात, गुरु चरणा नाल प्रेम अते प्रतीत बख्शिश करन। इतने कु हाजरी दर प्रवान बुलाओ फतेह आखो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

0: चौ पई पुनरा छिसका काटा सीसा श्री असकेत जगत के ईसा धन धन लोगन के राजा दुस्तन दाह गरीब नवाजा कबे बाज बेंती चौपई हमरी करो हाथ दा रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा
1: हमारा अपना जान करो प्रतिपारा
0: हमरे दोष सबा तुम काब हो आप हाथ दा मोहे बचाव हो
1: सुखी बसै मोर परवारा सेवक सिख सबै करतारा
0: मोर अच्छा निज करदा करिया सब बारन को आज संगरिया
1: पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा
0: तुम्हें तो छाड़ कोई अवर ना त्याहूं जो पर चाहूं सो तुम ते पाऊं
1: सेवक सिख हमारे कार्य चुन चुन सत्र हमारे मारिया
0: आप हाथ दा मुझा उपरिया मरण काल का त्रास निवरिया
1: जो सदा हमारे पच्छा श्रीयस्त जो करियो रक्षा
0: राख ले हो मोहे राखन हारे साहिब संत।

0: सब जगत बनायो देवदात जच्छन उपजायो
1: अंते क्या अंतारा सोई गुरु समझियो हमारा
0: नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी
1: सिवकन को सब गुण सुख दियो सतरंग को पर मोबद कियो
0: काट काट के अंतर की जानत पले परे की पीर पछानत
1: सब पर कृपा दृष्ट कर फूला
0: संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी
1: एक एक की पीर पछान कट कट के पट पट की जान
0: जब उद करख करा कर तारा प्रजा धरत तब देह अपार

0: ता कौ कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत।
1: महादेव को कह सदा शिव निरंकार का चीनत रहतेव।
0: आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णित भिन्न भिन्न तोहे तेती।
1: तुम्हारा लखा न जाए पसारा केवल सजा प्रथम संसारा।
0: एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पे और आपके ही पुपा।
1: अंडज जेरज से तजकीनी उत्पज खान वह रच दीनी।
0: कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट पे और शंकर एक
1: स्वरूप से अंबा।
0: अब रक्षा मेरी तुम करो सिख अबार असिख संगरो।
1: सकल मलेश करो रणकाता।
0: जे अस तुझ तब सरनी परे तिनके दोस्त दुख हुआ मरे।

0: कृपा दृश्य तन जाहे न हर हो ताके ताप तनक मह हर हो
1: सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शास्त्र सके न कोई
0: एक बार जंत मैं संभारा।

0: बचाई।
1: कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन सब राता।
0: सकल दे को हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता।
1: श्री अस्तो जब पे दयाला, पूरन करा ग्रंथ।

0: चापै
1: संबत् सत्रह सहस्रपण जय अर्थ सहस्रपन तीन गह जय
0: आदम सदी अष्टमी रविवारा तीर सतत्रम ग्रंथ सुधारा
1: हेतु श्री चरित्रोपख्याने त्रया चरित्रे मंत्री भूख

0: विचार
1: अपना जान मुझे प्रत परिय चुन चुन सतर हमारे मरिया
0: देख देख जग मैं दो चले राखा मैं और न दले
1: तुम हम करो सदा प्रत पारा।

0: अपना जान करो प्रित पारा तुम साहिब मैं किंकर थारा
1: दास जान दे हाथो बारो हमरे सब बैरियन संगारो
0: प्रथम तरो भगवत को त्याना बहोर करो।

चौंकिया चंडे बंगे जुगो जुग अटल धर्म का जय कर बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पता रखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तारजियो। समूह गुरद्वारिया गुरधामां दे खुले दर्शन दी तार ते सेवा संभाल करन दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाण्या दे माणे ताणिया दे ताणे उठिया दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरु। आप जी दे हजूर कीर्तन अते रहरा साहिब जी दी पाठी अरदास है जी। पवित्र हुक्मनामा बख्श के निहाल करो जी। अखर दा वादा घाटा पोल चुक माफ करनी सबत ते काज अस करने। सही प्यारे मेल जिना मिलिया तेरा नाम चेते आवे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सबत भला।

या जो गुरमुख नाम ते आएंदे तिन दर्शन दीजै हम तिनके चरण पखाल दे तूड़ कोल कोल पीजै पान सु

0: तुद भावै तेरी बंदगी तू गुणी गहीरा आपे हर एक रंग है आपे बोह रंगी ज्योतिस भावै नानका साई गल चंगी आपे हर एक रंग है आपे बोह रंगी ज्योतिस भावै नानका साई गल चंगी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। तिलंग महला चौथा। हर किया कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया बलहारी गुर आपने गुर कौ बल जाइया। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। असी सारे पेरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप जी अपने बच्चों को आज एतवार की क्लास वास्ते लैके आए। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पेरेंट्स नो कुछ कन्फ्यूजन हुई है जिदे करके एक बेनती करनी सी कि संडे की जी एतवार की क्लास है इसका टाइम 2:45 है 3 बजे नहीं है। 2:45 आप जी ने पिछे जरा एक घर है पिछली साइड तो जो जी पार्किंग है वो जिथे पहला ग्रंथी सिंघां दा निवास हुंदा सी उस घर नूं हुण असीं दशमेश गुरमत अकैडमी दे विच बदलिया है। उत्थे ही क्लासां होणगीआं। सिर्फ लैवल 1 दे बच्चे जिहड़े हन ओह ही उपर इत्थे आके क्लास लाणगे। बाकी सारे बच्चे उस गुरमत अकैडमी दे विच क्लासिस लाउणगे। 2:45 ते टाइम है जी क्लास शुरू हो जाएगी ते आप जी कृपा करनी कि 2:30 तो 2:45 दे विच विच आप जी बच्चों उत्थे छड सकदे हो अते फिर बच्चों इत्थे साडे सेवादार हन वॉलंटियर हन टीचर्स हन जिहड़े कि बच्चों नूं इत्थे गुरु घर दे विच वापस लैके आउणगे अते इत्थे ही इसे स्थान दे उत्ते ही कीर्तन होएगा रहिरस साहिब दा पाठ होएगा अते स्नैक तो बाद आप जी अपने बच्चों नूं लंगर हॉल दे विचों लै सकदे हो। इन्नी क बेनती सी जी। एक बार फिर सारे मां प्यो का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।